0: Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
3: तो फिर
4: अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
7: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
8: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
9: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
8: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
10: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो।
7: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

हेलो हेलो डालस की जनता, की हाल चाल? सभी चंगा या पंगा? आई डोंट इवन नो भाई, लाइफ इज अमेजिंग ऑन दिस साइड. आपको पता सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगती है? मैं आपसे हर मंडे आती हूँ मिलने, हर शाम, हर मंडे शाम को मैं आती हूँ एक 3 दिन की छुट्टी के बाद. नॉट रियली छुट्टी, आई मीन टेक्निकली आई एम स्टिल वर्किंग बट नॉट एट फाइनेशिया. हाउ एवर, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे पता क्या लगता है, आई लीव एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस एवरी सिंगल डे, लेकिन मुझे मंडे एक्चुअली शाम को ट्रैफिक कम मिलता है और मैं एक्चुअली टाइम के पहले पहुंच जाती हूँ, जबकि बाकी दिन आई एम लाइक एटलीस्ट 5 or 10 minutes अ लिटिल बिहाइंड. सो आई हैव नो आइडिया, मतलब आई डोंट नो मंडे को ट्रैफिक कम क्यों है. मतलब मंडे को सबको लगता है नहीं चलो घर चलते हैं, फिर ट्यूसडे शाम से कहते हैं चलो अभी घर नहीं जाएंगे, अभी पार्टी करेंगे, अभी और काम है. आई हैव नो आइडिया व्हाट द लॉजिक इज, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज नोबडी लाइक्स ट्रैफिक. वैसे अगर आप किसी ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं एंड यू हैड सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट, क्योंकि भाई डालस हाईवेज आर रियली रिस्की, देन डू मेक श्योर दैट यू कॉल अप उमर ख्वाजा. ही इज़ अ पर्सनल इंजरी अटर्नी, सो इफ यू हैड एन एक्सीडेंट एंड यू नो यू हैव बिन बैडली हर्ट और माइनरली हर्ट, यू फोकस ऑन हीलिंग वाइल ही विल फाइट द केस फॉर यू, एंड आपके इंश्योरेंस वाले उनको पैसे दे देंगे. बेसिकली ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. कॉल 4693005646 और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम. और मैं आ गई हूँ आपके साथ पूरे हफ्ते के लिए, एक्चुअली ऑल द वे अंटिल थर्सडे. Let's get the show on the road.

बैक, मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना मेरी आवाज रेडियो पे जब मैं बोलती हूँ ना एंड वी आर बैक, शी रियली लव्स इट. तो भाई ये उनके लिए जो जिनको ये मेरा एंड वी आर बैक का थोड़ा सा ये स्टाइल ज्यादा पसंद है. गाइज, वहां से याद आया कि एक्चुअली उससे बिल्कुल भी अनरिलेटेड है. अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बाइंग अ प्लेस टू लिव इन, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज बिकॉज योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन यू थिंक. 1998 से दे आर हेल्पिंग फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विद मॉर्गेज सोल्यूशंस वेदर यू आर बाइंग और रिफाइनेंसिंग. तो कॉल 9722455626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम. तो या जस्ट रीच आउट टू देम. आई एम गोना प्ले यू ए न्यू सॉन्ग विच यू नो इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीक आई प्ले दिस सॉन्ग. वो एक ही दिन हुआ था गाने को रिलीज हुए, ज्यादा हिट्स नहीं मिले थे, लेकिन आफ्टर 11 डेज आई मीन दिस सॉन्ग इज नाउ एट 6.6 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. यस, दिस वन इज कॉल्ड रे बाउड़ी.

0: गाइज वी आर बैक. आज हमारे पास बहुत ही मजेदार शो होने वाला है. आई एम गोना प्ले यू लाइक सम अमेजिंग अमेजिंग ट्यून्स एंड देन ऑफ कोर्स 8 o'clock वे वी प्ले आर रेगुलर गिव अवे वाला गेम. तो आज का गिव अवे कहाँ से है? आज का गिव अवे है पम परम पम पम इज फ्रॉम होको. आपको मिलेगी आलू टिक्की. और कहाँ से है आज का हमारा गिव अवे है लेट मी ओपन फन पिज्जा किचन ऑल्सो. तो 8 बजे आइए, देन वी विल डू समथिंग फन एट 8 o'clock. तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.
1: वो एक शख्स थी और हम दो बर्बादियां.

एक जुनून सा है, तू दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

एंड ऑफ कोर्स इज अ रिक्वेस्ट, दिस इज, अगर आपको नहीं पता, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक विच इज इन बॉस्टन, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक स्कूल्स आउट देयर, दे हैव एन इंडियन एनसेंबल एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे फीचर लॉट्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडियन आर्टिस्ट, लाइक दे फीचर्ड शंकर महादेवन, देव ऑल्सो फीचर्ड ए आर रहमान. सो दिस वन, दिस नेक्स्ट ट्रैक इज एक्चुअली ए आर रहमान मीट्स बर्कली. And they had dedicated this entire ensemble to him, and they did a lot of songs from Dil Se, because that movie has some incredible songs. So this is Dil Se Re by Berkeley Indian Ensemble. This is a request that goes out to Shafi. Shafi called me up thodi der pehle. Mujhe badi khushi hui, kyunki I was like, yes, this is totally my zone. So guys, enjoy this track. It's a very different Dil Se Re than what you've heard. I'm sure you're going to enjoy it.

गई, किसी ने मुझे अभी कॉल करके सजेस्ट किया कि भाई आप जब वो अपनी अराइवल जो आते हैं वो थोड़ा सा आप सिंगर हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको बोरिंग तरीके से मैं आ गई बोल के तो इट्स नॉट सो फन. तो मैंने सोचा कि चलो ये सजेशन भी ले लेते हैं, थोड़ा गा के बोलते हैं, क्योंकि व्हाई नॉट, जब टैलेंट है भगवान ने दिया है तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए, है कि नहीं. तो गाइस पता है क्या, आज जैसे आपको पता है मेरे शो के बारे में, यू नो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट्स करंट, स्टफ दैट्स ऑन सोशल मीडिया, स्टफ दैट्स ऑन रील्स, स्टफ दैट्स ट्रेंडिंग आउट देयर, एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट लव एंड डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स. एंड उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वी ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस. बाय द वे, लास्ट वीक वी डिड अ होल हेल्थ एंड वेलनेस थिंग, लाइक यू नो अ चेकलिस्ट, क्योंकि भाई अक्टूबर शुरू हो जाएगा 2-3 दिन में, एंड उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 3 महीने बचे हैं आपको अपने 2026 गोल्स खत्म करने के लिए. वी आर नॉट गोना गो इन टू दैट अगेन, क्योंकि आई ऑलरेडी हियर दैट लास्ट वीक. दिस वीक वी गोना फोकस ऑन वट. सो लेट्स कम बैक टू दिस. सो अ फ्यू वीक्स अगो वन आई वॉज डूइंग दिस लव डेटिंग वाला सिचुएशन ऑन एयर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, आई गॉट सो मेनी इंटरेस्टिंग कॉल्स, मोस्टली फ्रॉम गाइज एंड यू नो मैन हु आर सिंगल. एंड नो दे वर नॉट अप्रोचिंग मी, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, बट दे वर ऑल आस्किंग मी. एंड दिस इज फ्रॉम गाइज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एज रेंजेस. यू नो देर वॉज समबडी हु वॉज इन देयर 20s, देर वॉज समबडी इन देयर 30s, देर वॉज समवन इन हिज 50s, एंड दे वर ऑल आस्किंग मी कि यार इपी आप लव एंड रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग के बारे में बात करती हो, यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट मेक रिलेशनशिप वर्क, बट वट वी आर हैविंग ट्रबल इज इन टूडेज डेटिंग, टूडेज इन्वायरमेंट वेयर द डेटिंग इज काइंड ऑफ बेसिकली ब्रोकन थैंक्स टू ऑल द डेटिंग एप्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर पर्सन, बट समहाउ वो कभी भी द मोमेंट दे स्टार्ट अप्रोचिंग द गर्ल्स समहाउ दे ऑलवेज गेट फ्रेंड जोन्ड, लाइक एंड सो मैनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड दे वर आस्किंग मी वॉट शुड आई डू. यू नो एवरी टाइम आई गो एंड अप्रोच अ वुमन वो मुझे अपना भाई बना देती है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा वॉट डू आई डू कि वो मुझे भाई ना बनाए एंड एवरीथिंग. सो दैट्स वाई थॉट कि भाई दिस वीक वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, बिकॉज यू नो वट, फ्रॉम अ गाइज परस्पेक्टिव you guys don't know what girls are thinking, right? And the same thing goes vice versa. So traditionally, वैसे मैं हम तो modern ज़माने में हैं. I mean, girls are also approaching guys these days. However, traditionally, and I am a big believer of at least these basic traditions, I do feel that men definitely need to approach the women, because women, yes, you know, we women are, you know, going ahead and they're making their own world. Abhi hum log purane zamane mein nahi hai, lekin at the same time the rules of approaching women have changed significantly. Pehle jaise aap, you know, you could walk into a grocery store and approach a woman, today you can't really do that, because the moment you do that the girl is going to be like, oh my god, what a creep, why is he staring at me. You can't do the Bollywood wale harkate also in today's times, especially in a place like America. So we're going to talk about all of those things today. Lekin uske pehle ek chhota sa gana.

गाइज मेरे को ध्यान आया कि भाई मैंने तो अपना नाम ही नहीं बोला, तो कई बार मुझे कॉल करते लोग कहते हैं आप नवनीता जी बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नवनीता जी नहीं बोल रही हूँ, दिस इज द वन एंड ओनली इपी द हिपी, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड यू आर लिसनिंग टू माई शो। चलो साथ में बोलते हैं एन इवनिंग इन डैलस। तो गाइज हाँ, ये 7 से 10 बजे का स्लॉट मेरा ही है, मंडे टू थर्सडे, और मैं हर हफ्ते यहीं रहती हूँ मंडे टू थर्सडे 7 से 10 बजे। इन केस अगर मैं एक आध दिन नहीं आती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम आई एम हियर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए, अगर आपको कॉल करके कोई गाना रिक्वेस्ट करना है तो ज़रूर करिए एट 972-235-5555। और अगर सिर्फ हाय बोलना है तो श्योर, गो फॉर इट, गिव मी अ कॉल एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। तो गाइज फ्लेवर लाउंज जो है, आपको पता है ना, फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को, दे आर सर्विंग एन ऑल न्यू लंच बफे, वीकेंड लंच बफे। दे हैव एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल, फ्रेश फ्लेवर्स एंड सो मच मोर दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू। ऑल ऑफ दिस इज ओनली फॉर 24.99, यानी सिर्फ $25 में आपको पेट भर के बहुत सारा खाना मिलेगा, दैट यू नो यू कैन प्रॉबली स्किप अ मील और समथिंग मे बी, यू नो। एन्जॉय द बफे फ्रॉम सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 12 PM to 3 PM। अपने दोस्तों वोस्तों के साथ जाओ, इट्स ऑलवेज नाइस टू ट्राई ऑल ऑफ दीज अमेजिंग डिशेज विच यू प्रॉबली वुडेंट ट्राई ऑन एन एवरी डे बेसिस, राइट? तो आगे बढ़ते हुए गाइज एक गाना सुनते हैं, देन वी कम बैक एंड टॉक सम मोर।

आप उसे पसंद करते हैं, ठीक है, वो आपके सारे जोक्स पे हंस रही है. देन शी ऑल्सो टेक्स्ट यू बैक, एंड शी टेक्स्ट यू बैक फास्ट. आई डोंट मीन लाइक अगले दिन रिप्लाई करती है, आई मीन लाइक इमीडिएटली, एंड यू गाइज हैव अ कॉन्वर्सेशन. आप 6 महीने यू स्पेंड परस्यूइंग दिस वुमन एंड बीइंग द मोस्ट रिलायबल पर्सन इन हर लाइफ. उसको कुछ भी चाहिए होता है, आप एक झटके में वहीं पे राज मतलब हाजिर हो जाते हो. यू डू एवरीथिंग फॉर हर, एंड देन वन नाइट when you actually express your feelings, like you're like, hey girl, I like you, she turns around, she's like, oh, पर मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने भाई जैसे ट्रीट किया, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. तो शी इज लाइक, आई एम सॉरी, आई गेव यू द रॉन्ग इम्प्रेशन. एंड देन आपका सारा दिल वहीं पे चूर चूर हो जाता है, बिल्कुल चूर चूर नान की तरह एकदम क्रम्बल. तो तब क्या करेंगे गाइज? तो ऐसी इसी चीज पे हम बातें करेंगे आफ्टर आर गिव अवे एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गाना. रिमेम्बर 8 o'clock वी हैव आर गिव अवे, 8:05 का हमारा गिव अवे है. एंड दिस वीक लास्ट वीक आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गिव अवे गेम. दिस इज कॉल्ड द वर्ड अंताक्षरी, विच मीन्स आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग एंड यू हैव टू पिक अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द पार्ट दैट आई प्ले फॉर यू. सो मेक श्योर यू आर कॉलिंग आफ्टर यू लिसन टू द सॉन्ग. मैं 1 मिनट का वो गाना थोड़ा सा बजाऊंगी, आप उसमें से एक वर्ड चूज करेंगे और उससे रिलेटेड गाना मुझे गा के सुनाना पड़ेगा, बोल के नहीं, गा के. और ऐसे नहीं क्योंकि गेस मार दिया, ठीक है? तो बहुत लोगों ने पिछले बार आई थिंक थर्सडे को हमने ये खेला था एंड इट वॉज अ बिग हिट. रिमेंबर आई ओनली हैव वन प्राइज, सो ओनली द पर्सन हुज कॉल गेट्स कनेक्टेड फर्स्ट गेट्स द प्राइज. ओके, सो मूविंग ऑन, लिसन टू दिस सॉन्ग.

सॉरी टू कट द सॉन्ग शॉर्ट गाइज, लेकिन मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी. हमने गिव अवे अभी तक खेलना शुरू नहीं किया है. वी हैवंट स्टार्टेड प्लेइंग द वर्ड अंताक्षरी येट. इट्स गोना हैपन एट 8:05 आफ्टर द 8 o'clock का कमर्शियल ब्रेक. अभी हम सिर्फ गाने बजा रहे हैं यार. वो 8 o'clock हमारा गेम हमेशा उसी टाइम होता है. सो कम बैक देन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और visit astrologerishwar.com.
7: Wait a minute! Who are you?
5: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
10: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.
11: And guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie, only on Fun Asia Radio 104.9 FM, and you are listening to my show, An Evening in Dallas. That's right, guys. So, khele hamara game. Hamara game bahut mazedar hone wala hai because we are going to play word antakshari. Bachpan mein humne sabne antakshari khela hoga, which is basically aap jo last letter hai, jo mukhde ka last letter hai, jo bhi hai, wahan se aapko gana shuru karna padega. Lekin hamara ye word antakshari hai, which means I'm going to play you like maybe 30 seconds or just the beginning of this one song, aur aapko us gaane mein se koi bhi word choose karna hai, whatever word you can, and then usse aapko ek aur gaana गाना पड़ेगा अगर आप नहीं गाएंगे तो गाइज इट डजंट काउंट यू कांट जस्ट से गुड़ ना इश्क मिठा नहीं ऐसे नहीं चलेगा यू हैव टू सिंग प्रॉपरली गुड़ ना इश्क मिठा ओहो रब्बा लखनक से नू जावे इफ आई नो माय पंजाबी वेल व्हिच आई डोंट रियली बिकॉज आई एम नॉट पंजाबी हाउएवर अगर आप वो गाना गा रहे हैं तो प्रॉपरली उसको गाना पड़ेगा, ऐवे नहीं मतलब गुड एंड ऑल इश्मिठा ये गाना है. और वैसे अपने गाने तो बिल्कुल भी मत बनाना क्योंकि वो भी आते हैं. देन अगर आपके पास 30 सेकेंड्स है आपका आंसर देने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए नहीं है हमारे पास टाइम. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस गेम. माई नंबर इज 9722355555 एंड लेट्स गेट गोइंग. सो हियर वी गो, दिस इज द सॉन्ग.

0: And we have our first caller. Let's take our first caller. Hi, can you hear me?
1: Hi.
0: Hi. Okay, first of all, tell me your name and then you have to sing the song from whatever word. Then tell me the word that you chose and then you have to sing the song, okay?
1: Okay, the word I chose is Samundar,
0: Okay.
1: and the song is Samundar mein nahake tum par bhi namkeen ho gayi ho.
0: Ha, totally, yes, kya baat है. Let's give a round of applause for, आपने नाम तो बताया नहीं मुझे अपना.
1: लक्ष्मी
0: रश्मि,
1: लक्ष्मी.
0: लक्ष्मी,
1: हाँ जी.
0: भाई लक्ष्मी, आपके नाम पे तो बड़े मैक्सिंग हो रहे हैं. हैव यू डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? देयर इज अ न्यू ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, इट्स कॉल्ड लक्ष्मी मैक्सिंग. ऑल बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लक्ष्मी. ओके गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए और उसके बाद लक्ष्मी आई विल एक्चुअली प्ले द सॉन्ग दैट यू ऑल्सो सजेस्टेड. बट स्टे ऑन द लाइन, आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तब तक के लिए गाइज, यू गाइज एंजॉय द सॉन्ग. लक्ष्मी डोंट हैंग अप. ओके
1: ओके
0: ओके गाइज, एंजॉय.

What an incredible song. This is one of my all-time favorite songs. और उसका जो डांस है ना, मैं हर बारी वो डांस भी करती हूँ. दिव्या भारती, द फीचर्ड एक्ट्रेस ऑन दिस सॉन्ग, शी डाइड वे टू अर्ली एंड आई फील लाइक यू नो शी वुड हैव बिन सच एन इनक्रेडिबल टैलेंट इफ शी हैड सर्वाइव्ड. शी वॉज सो आइकॉनिक, शी वॉज अ गुड एक्ट्रेस, प्रिटी गर्ल, एंड फॉर सच अ यंग एज शी हैड अचीव क्वाइट अ बिट ऑफ सक्सेस. तो जैसे मैंने बोला था कि गिव अवे वाले गाने आपने बड़े अच्छे से गाए, और मेरे पास एक्चुअली दो कॉल्स आए गिव अवे वाले गाने के लिए, तो इसीलिए आई विल एक्चुअली प्ले दो सॉन्ग्स दैट यू गाइस सजेस्टेड. सो आई एम गोना डू दिस वन इज समुंदर में नहा के.

0: कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

Guys, this is Ippy the Hippie, and you are still listening to Funasia Radio 104.9 FM, and this is, of course, my show, An Evening in Dallas. So, guys, thank you so much for all the lovely calls. एक अभी अनीता जी ने मुझे कॉल किया था, आप भी अपना गाना सुनाओ, तो एक गाना मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपना गाना भी लगा दूंगी, why not? लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे, we were going to talk about why guys, so many guys these days, and actually girls also for that matter, why do you all get friend zoned and why is it so difficult to find and maintain a relationship in today's times? Guys, personally, I feel honestly ki the dating apps and the extra dependency on social media, first of all, has made us really, really fearful, and two, has taken the skill away of making direct conversation, like in-person conversation. I feel like hum log itna social media pe dependent ho gaye that we have forgotten how to have a proper one-on-one conversation or how to approach a woman in a bar or at any place for that matter. 10-12 saal pehle yaad hai, I mean, you know, people would do that. Nowadays, if you do that, people, the first thing girls think is like, oh my god, what a creep. So, pehli baat to ye, and then even if you do approach it, a lot of the men complain. Jaise mujhe call karke kafi log poochte hain ki why am I getting friend zone all the time. So, first of all, this one goes out to you guys. Theek hai? Pehli cheez to ye hai ki, let's explain what is this friend zone wali cheez. Now, people in their 30s, in their early 40s who are still single, or anyone below that age group also, I don't need to tell you what friend zone is. Of course, you guys know what friend zone is. But for my boomers or people in their like late 50s and 60s, aapke zamane ka term hai nahi, to let me explain to you what friend zone actually matlab kya hota hai. जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ. भाई, फ्रेंड जोन वो सिचुएशन होता है कि आप किसी को पसंद करते हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन देम रोमांटिकली, और वो आपको फ्रेंड बना देता है या भाई बना देता है या बहन बना देता है, जैसे भी है. ओके, सिंपल. एंड दे बेसिकली से ओके, वी शुड जस्ट बी फ्रेंड्स. बट नोटिस व्हाट दिस फ्रेज डज. पहली चीज तो ये है कि ये नहीं कह रहे कि हम आपको फ्रेंड बना रहे, आपको एक पर्सन से आपको एक प्लेस बना दिया जा रहा है, फ्रेंड जोन ही बना दिया है. मतलब ओके, यू बीन डेजिग्नेटेड एन एरिया, लाइक समवन पुट यू देयर, यू बीन पिक्ड अप फ्रॉम दिस रोमांटिक स्पेस एंड पुट इट इनटू अ फ्रेंड जोन स्पेस. ओके, दिस इज विद बॉर्डर्स एंड गार्ड. तो वो चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि देयर इज फिक्स बाउंड्रीज, वेरी फिक्स बाउंड्रीज दैट समबडी हैज डिफाइंड, एंड देयर इज अ गार्ड. सो नाउ we will talk more about this, लेकिन after this song, ठीक है? आप आओ गाना सुन के, then we will continue this.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
4: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide। विजिट SFLWorldwide.com।
7: तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ October 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 to 8:00. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

भाई कई बार तो मुझे लगता है हम बॉलीवुड मूवीज देख देख के इतना ओवर ड्रामेटिक हो गए हैं कि ठीक है चलो यू नो वी इज ट्राई लाइक अरे हम तुमको इतना ज्यादा चाहते हैं कि मरने वाला वगैरह वगैरह. भाई कोई बात नहीं यार, फ्रेंड जोन ही किया है, इट्स जस्ट अ रिजेक्शन. यू हैव टू लर्न टू टेक इट लाइक आई डोंट नो विद अ बिग हार्ट. एक नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी, उसमें क्या है, बिग डील. ओके, तो पहली चीज तो हम ये बोलेंगे कि गाइज अगर आप फ्रेंड जोन हो गए कोई बात नहीं, इट हैपन्स, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट, एवरी सिंगल पर्सन, आई कैन प्रोमिस यू दैट वन. इट्स मोस्टली जस्ट अ नो. ओके, अगर आपको किसी ने फ्रेंड जोन कर दिया है इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको नो ही बोला है. व्हेन समवन डजंट फील द सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज नॉट अ ट्रैप यार, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मिसमैच. आपको ऑरेंज पसंद है, उनको लाल पसंद है, इट्स लाइक दैट. ओके, एंड विद जस्ट अ लिटल मोर हिस्ट्री अटैच. नाउ थिंक अबाउट इट. एंड सेकेंड, फ्रेंड जोन दोनों तरफ से होता है, ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओनली गर्ल्स फ्रेंड जोन गाइज, गाइज ऑल्सो फ्रेंड जोन गर्ल्स ऑल द टाइम. इट हैपन्स ऑल द टाइम. आपको कुछ कुछ होता है ना, याद याद है ना उसमें क्या बोलते हैं, काजोल को फ्रेंड जोन कर दिया था शाहरुख खान ने. एग्जैक्टली, अंजलि बिकेम फ्रेंड जोन फॉर लाइक 20 ईयर्स और समथिंग, अंटिल वट एवर हिज नेम वॉज राज फाइनली रियलाइज कि अरे नहीं राज नहीं, राहुल था उसका नाम, पता नहीं यार जो भी था, र से नाम था. ठीक है, नाउ द फ्रेज क्वाइटली असाइंस ब्लेम कि इसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया. अगर ये वाली जो चीज़ है ना कि उसने मुझे फ्रेंड जोन, मतलब आप किसी को मतलब ब्लेम कर रहे हो कि ठीक है, इट मीन्स दैट उसने कुछ गड़बड़ किया है आपके साथ. इसका मतलब ये नहीं है कि नोबडी, मतलब यूजुअली क्या होता है, किसी ने कुछ नहीं किया, बस सबने अपनी लाइक फीलिंग्स बोली है कि ठीक है आपको पसंद है, उनको नहीं पसंद है, दैट्स इट. नोबडी हैज ब्लेम्ड एनी वन ओवर हियर. एंड द केमिस्ट्री वॉज जस्ट नॉट म्यूचुअली अट्रैक्टिव टू ईच अदर, इट वॉज नॉट रेसिप्रोकल. ओके, एंड फाइनली द रियल प्रॉब्लम इज यूजली अ लिटल बिट अर्लियर. इसका मतलब क्या है, इन मोस्ट स्टोरीज जो हमारे जो लिसनर्स हमें बोलते हैं वगैरह बातें करते हैं, द मैन नेवर क्लियरली रोमांटिक, द मैन नेवर क्लियरली सिग्नल्ड रोमांटिक इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. मैंने ये चीज़ जो मेरे पास कुछ दिनों पहले कॉल आई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी ऑफकोर्स, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वो पता नहीं, ही इज इन हिज 50s नाउ, वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं एंड ही कॉन्स्टेंटली कीप्स गेटिंग फ्रेंड जोन. मैंने कहा यू नो वॉट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गाय जस्ट बींग नाइस टू अ गर्ल एंड अ गाय हु इज रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन अ गर्ल. सो वेन यू डोंट स्पेसिफिकली क्लियरली मेक दोज इंटेंशंस क्लियर, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको फ्रेंड जोन करी है और आप अपने में यू नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू जस्ट बी अ गुड गाय. सो वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर द सॉन्ग.

So guys, we are back. Yes, you are still listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ for another hour or so. So before we go on to the next part of the show, which is what we are continuing, why do you guys keep getting friend zoned? मैं आपको जरा ये बता दूँ कि if you are looking for tax services, if you are a small business owner or any kind of business owner, or या फिर individual भी है who doesn't know how to do the taxes, maybe you're new in the country, maybe you haven't figured out TurboTax या any of these other things, then you need to reach out to AG FinTax. They are offering trusted tax and accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888. Okay, again, 469-942-9888 or visit agfintax.com today. तो गाइस, जैसे हम बोल रहे थे कि व्हाई डू यू गाइस कीप गेटिंग फ्रेंड ज़ोन, पहली चीज तो ये है कि ये सात, आई एम गोना नेम यू सेवन पॉइंटर्स. ओके, नाउ दी सेवन पॉइंटर्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइम यू गो अप्रोच अ गर्ल एंड यू नो नेक्स्ट टाइम यू ट्राई एंड गेट क्लोज विद अ गर्ल यू बेसिकली हैव फीलिंग्स फॉर एंड यू आर ट्राइंग टू अप्रोच हर. जस्ट कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, many men and women, this goes for both sides, okay, they wait until ki they are sure ki are us dusri taraf se kya feelings hai. To aap matlab you like this person and you don't do anything about it just because you have this fear of rejection. To aap wait karte ho ki okay, maybe they will give me some kind of hints, you know, that means they also like me before you actually make a move. The problem pata kya hai usme, प्रॉब्लम इज दैट कि वो सर्टनिटी कभी नहीं मिलेगा जब तक आप अपने वर्ड्स नहीं यूज करोगे. ठीक है, आपको हर चीज को, आई डोंट बिलीव इन दिस ग्रे एरिया वाला जोन. आई ऑलवेज लाइक टू कीप इट ब्लैक और वाइट, या फिर जो भी कलर आपका पसंद है उसको क्लियरली बोलो. अगर आपको फीलिंग्स हैं तो आपको बोल देना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना करेंगे, देन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मूव ऑन ना. यू वॉन्ट बी थिंकिंग कि अरे यार, डज दिस पर्सन लाइक मी, डू दे नॉट लाइक मी. यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि आगे से कोई आएगा, देन यू मेक अ मूव. दैट्स बेसिकली यू वर्किंग आउट ऑफ फियर इन दैट स्पॉट. ओके, इंटरेस्ट इज यूजली शोन. इंटरेस्ट कैसे दिखा दे दूसरी तरफ से, इंटरेस्ट इज यूजली शोन थ्रू ए स्मॉल ambiguous माने unclear signal, and waiting for a guarantee means you will be waiting forever. So don't wait for that signal, just say it like, hey girl, I like you, do you want to go out this weekend? Ya fir hey, I think you're pretty hot or cute or whatever, maybe we should go out this weekend and figure out. If you're a girl, then you can totally approach like this. If you're a guy, do it the other way around. Also don't be this sly. Abhi I'm to a funny person, tabhi main usko comedy ki tarah se bana ke bol rahi hu, but don't do that, nahi to chapat padega muh pe ulte haath ka. तो ये गाना सुनते हैं, आगे आते हैं इस गाने के बाद, देन वी विल टॉक व्हाट आर द अदर सिक्स पॉइंटर्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड.

बैक। हम 4 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं जरा ये तो बता दूं आप सब लोगों को कि दूसरा पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट ये है कि सम पीपल, मेन एंड वुमेन, बोथ बिलीव दैट इफ दे बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड अवेलेबल, समहाउ द फ्रेंडशिप विल ब्लॉसम इन टू प्यार। एंड कई लोगों को ना यही चीज लगता है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में इस चीज को बहुत दिखाया गया है। एंड आई फील लाइक ऑल दो इट वर्क्स इन अ लॉट ऑफ केसेस, येस इट वर्क्स बिकॉज इट ब्रेक्स द आइस। हाउ एवर, अट्रैक्शन इज रेयरली अ रिवॉर्ड फॉर सर्विस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आपको, कई कई लोग क्या होते हैं ना, दे आर सो अवेलेबल, मतलब कुछ नहीं बोला, कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑलवेज देयर विद अ यू नो हेल्पिंग हैंड। आपको क्या चाहिए, मैं आई विल बी देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, और जो भी, इस तरह से यू आर ऑलवेज देयर फॉर दैट पर्सन, ऑलवेज लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यू नो बेसिकली पीपल थिंक दैट इफ यू आर अवेलेबल टू देम ऑल द टाइम, देन समहाउ दे विल अप्रिशिएट दैट अवेलेबिलिटी एंड रेसिप्रोकेटेड, कि अच्छा नहीं, दिस पर्सन मस्ट रियली लव मी, दैट्स वाई दे आर शोइंग ऑल दिस अवेलेबिलिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, अट्रैक्शन, रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट इट, लव एंड ऑल डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन इज रियली नॉट द सेम एज बींग अवेलेबल। बींग अवेलेबल जस्ट मीन्स दैट यू आर जस्ट अ नाइस ह्यूमन बींग एंड यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प दी अदर पर्सन आउट, बट इट डजेंट मीन कि वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी अच्छी सर्विस को देख कर वो, मतलब सर्विस, आप प्रैक्टिकली सोचो बिजनेस में क्या होता है, आप सर्विस देते हैं तो लोग टिप देते हैं उसके बदले, लेकिन उसके साथ कोई डेट पे नहीं जाता है, राइट? यू आर डूइंग बेसिकली काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग, अनलेस एंड अंटिल यू मेक इट क्लियर कि फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब यू नो इट इज, यू आर डूइंग द सर्विस और वट एवर दिस हेल्प आउट बिकॉज यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द पर्सन, एंड तब तक आपकी दाल नहीं गलने वाली। बेसिकली क्या होता है इन दिस केसेस, फ्रेंडशिप बिकम्स लाइक अ हिडन स्ट्रैटेजी। आप यू नो उसके बीच बीच में यू आर ट्राइंग टू थ्रो इन द फैक्ट दैट ओ यू लाइक दिस अदर पर्सन, एंड स्लोली आप अपनी तरफ से ही इट बिकम्स लाइक अ रिजेंटमेंट, स्पेशली जब दी इट्स नॉट रेसिप्रोकेटेड फ्रॉम द अदर साइड, व्हेन इट डजेंट पे ऑफ। लाइक आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो किसी लड़के या लड़की को पटाने के लिए, यू आर ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन, एंड आप फ्रेंड्स हो रहे हो उसके साथ, एंड देन यू आर जस्ट थिंकिंग कि नहीं, मे बी इट्स गोना पे ऑफ, मे बी इट्स नॉट गोना पे ऑफ, एंड ऐसे करते हुए 6 महीने निकल जाते हैं, साल भर निकल जाते हैं, एंड इट डजेंट पे ऑफ। देन वॉट हैपन्स, देन यू स्टार्ट हेटिंग इट, देन यू आर लाइक नो दिस पर्सन इज जस्ट बैड, ये मेरा मतलब उठा रहा है, ये उठा रहा है, लेकिन आपने कभी उसको क्लियरली शायद इंटेंशन ही नहीं बताया अपना, तो कैसे होगा, है ना? तो वी आर गोना फिनिश द सॉन्ग एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन।

Yes, you're listening to Ippy the Hippie only on Funasia Radio 104.9 FM. भई अगर आप हैलोवीन या दिवाली या कोई भी ओकेजन करने की सोच रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और उसके बाद भी शायद चाहे अभी शादी का सीज़न वैसे ही आने वाला है सो मैनी हॉलीडेज एंड सो मैनी फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू सम काइंड ऑफ अ ग्रैंड इवेंट लाइक दैट एंड यू नीड हेल्प बिकॉज गाइज I know how hard it is to plan all of this. I've been there. Don't do it all by yourself. Just reach out to Vanessa Events because they bring it all together. Chahe wo venue ho, decor ho, photography, hospitality, catering, which is by the way done exclusively by Basera Grand. Then you need to reach out to Vanessa Events. You can call Hari Basera at 469-442-8770 or visit Vanessa Events. Just Google them and you might be able to find their website, which I don't have unfortunately, but you should be able to find it, okay? So, guys, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने continue करेंगे अपने discussion. Why do you guys keep getting friend zoned? That's because you guys aren't making it clear enough to the other person. We'll talk more about some other things that you can keep in mind. Six more pointers to keep in mind, just to make it all clear. उसके बाद मना किया तो फिर उसके बाद you know मना कर दिया. But आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करिए नहीं तो कैसे पता चलेगा नहीं तो तन्हा दिल रह जाएगा

गाइस, पॉपुलर डिमांड से अभी एक हमारे पास कॉलर आई, अनीता जी। अनीता जी कह रही है कि भाई आप अपना गाना नहीं लगा रहे हो। मैंने कहा, अनीता जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बजाया था अपना गाना, क्योंकि आपने बोला था। तो एक्चुअली मैंने उस टाइम पे अपना गाना अनाउंस नहीं किया था, तो इसीलिए अनीता जी, बिकॉज यू रिक्वेस्टिंग फॉर दिस, ये छोटा सा गाना आपके लिए, इट्स जस्ट अ लिटल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो आई होप यू एंजॉय दिस। लेट मी सी कौन सा बजाऊँ आपके लिए। आई विल प्ले दिस वन फॉर यू। ओके, ये आपके लिए स्पेशली।

the next thing that you have to get over, honestly, is the fear of rejection. भाई डर के आगे जीत है और नहीं है तो एक वो जो ग्रीन कलर की ड्रिंक आती है वो उसको पी ले हो और वैसे ही आ जाएगी सलमान खान की तरह डर के आगे जीत वाली यू नो स्ट्रेंथ आ जाएगी. लेकिन अगर आपको वो ड्रिंक नहीं पीनी है ग्रीन कलर की जो कम्प्लीटली हैज नथिंग टू डू विद डर बाय द वे, यू नीड टू जस्ट कन्विंस योर माइंड कि देखो भाई रिजेक्शन सबसे होता है, रिजेक्शन ऑब्वियसली इज गोइंग टू हर्ट, सो मैन अवॉइड द फियर ऑफ रिजेक्शन बाय स्टेइंग वेग. तो आप अनक्लियर रहते हो कि आप अपने क्लियरली बताओगे नहीं कि आपको लगता है कि भाई अगर रिजेक्ट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा. एम्बैरेसमेंट के चक्कर में, एम्बैरेसिंग और अपनी ईगो और अपनी प्राइड को बचाने के चक्कर में कई बार आप अपनी फीलिंग्स दबा देते हो. एंड स्पेशली टू माई गाइज, यू नो यू डू दिस मोर ऑफन देन द गर्ल्स, यू नो, सो वी ऑल नो दैट. ठीक है, उसको मान लेते हैं अभी, लेट्स नॉट हाइड इट एनी मोर. वेग इज अ स्लो रिजेक्शन, स्टेइंग वेग. अगर आपने अपनी इंटेंशंस क्लियरली नहीं बोली है टू दिस गर्ल और हूएवर इट इज, देन दैट्स अ स्लो रिजेक्शन, क्योंकि उनको कभी पता भी नहीं चलेगा, आप अपनी फीलिंग्स भी नहीं बोलोगे एंड यू आर जस्ट लाइक डिली डैलिंग ओवर दिस होल थिंग. ओके, अ क्लीन नो इज लाइक अ इज सो मच मोर काइंडर than like a confused no. Up, isn't it worse ki koi aapko is just stringing along the way and you're just going in for the ride and jab wo apni puri zindagi kaat rahe hain aapko side mein aise hi leke, you're just like an option then the whole time. Lekin however, if you express your feelings clearly and you tell them, bro, this is what it is, this is what it is, yes or no, no, okay fine, I'll move on, that's it, it's so much better, right?

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahu.
3: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
2: Kaise?
3: Page 3 eatery?
2: No, not another restaurant again.
3: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
2: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
11: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
10: सच में सब संभालेंगे
11: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन partner.
12: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

तो गाइस एक चीज़ मैं बताना भूल गई ऑलमोस्ट, कि अगर आप स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं देन रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी बिकॉज दे आर सर्विंग प्राउडली टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 8444-228-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे.

And then finally, जो सेवेंथ पॉइंट था, विच आई डोंट नो हु दिस इज रेलेवेंट फॉर, बट देर इज दिस मॉडर्न मिक्स्ड डेटिंग कल्चर, विच उसका मतलब क्या है? देर इज बेसिकली ऑल ऑफ दीज रियल एम्बिग्यूअस सिचुएशंस, एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज नो वे अराउंड इट. दिस होल थिंग ऑफ डेटिंग एप्स, ग्रुप हैंग आउट्स में ज्यादातर अगर आप हैंग आउट करें, या फिर यू आर ओनली रिलाइंग ऑन डेटिंग एप्स, या फिर शादी डॉट कॉम, योर जीवन शादी डॉट कॉम, विच इज बाय द वे नाउ इट्स लाइक अ डेटिंग एप, इट्स नॉट रियली अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट एनी मोर. आई मीन आई हैव बिन टोल्ड पीपल आर जस्ट गोइंग एंड स्काउटिंग फॉर डेट्स ओवर देयर एंड सिचुएशनशिप्स ओवर देयर. ओके, सिचुएशनशिप्स, अनक्लियर नॉर्म्स, and these mean that nobody is sure what counts as a date anymore. So you have to apparently use the word quote unquote date. Ambiguity, it favors those kind of people who are willing to call it whatever they want and without taking so much stress ki chalo, I mean, we are not in a relationship, we are just kind of figuring things out, played by ear, that kind of situation. तब आपके लिए ठीक है. अगर आपको life partner ढूंढना है, you have to be very, very clear. I feel like that is the place where most people are getting it wrong these days, is because, you know, you go on dating apps and you say that, yeah, you want something long term. But the moment you start calling it, so is this like a date? They're like, why do we have to call it a date? Why can't we just call it a hang? Because guys, you don't hang out with, you know, your future partners or whatever. If you're going, you have to go with clear intentions. So this applies to guys and girls both. You have to make it clear. And agar kisi ki taraf se bhi unclarity, matlab clarity nahi aa rahi hai, then you need to stop right away. Then you're like, no, not for me. Okay, being intentional is very, very important. तो अगर मुझे ये सात pointers में से कोई भी एक pointer choose करना होगा, I'm going to choose clarity because technically clarity goes into all of these seven pointers. कल आप जब वापस आएंगे, it's time for me to go, guys. लेकिन tomorrow when you guys come back, then we are going to talk about how to approach and how to develop conversation skills when you are trying to approach somebody for dating. Okay, number one, remember you have to be clear. Number two, remember be intentional. Those are two things, and I'm sure if you follow these rules, these are not rules honestly, but if you keep these things at the back of your head, I'm sure nobody's gonna friend zone you, because, and even if they do, you're not gonna feel bad about it, because at least you made it clear. And you didn't wait कि अच्छा अभी मेरे को कोई फ्रेंड जोन करने वाला है रिजेक्शन के डर से, अब अपने फीलिंग्स नहीं बोला है आपने. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है सुनना. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, एपी द हिप्पी फ्रॉम फनेजर रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज़ माई शो एंड इवनिंग इन डैलस. वेन यू कम बैक टुमारो देन वी विल टॉक अबाउट मोर. अभी के लिए इतना ही. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर इवनिंग एंड अ गुड नाइट.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: What, Chunka?
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
1: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
0: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
1: पता नहीं।
2: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
0: Ab hui na smart marketing.
2: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
3: Smart Reach AI, a Panacea network product.
4: Abhe jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
5: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरथ सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी.

tracks that put you on the right track.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

topic you want all day, every day, only on Fun Asia Radio.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
4: Haan.
3: Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: रुको जरा सब्र करो
8: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया

0: सब कुछ सीज कर लो।
1: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
2: Hi, this is Ranbir Kapoor.
3: And I'm Mani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Lights, Mike, Bollywood, Fallasia!

0: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
1: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड ऑफ क्लिक्स।
0: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
1: वो पता नहीं।
2: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
0: Ab hui na smart marketing.
2: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.
3: Smart Reach AI, a Panacea Network product.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं मंदर क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है
1: लो जी
2: बिल्लो

नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
3: सर, बढ़िया है. 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स.
2: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
3: वो पता नहीं.
4: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं. Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV, and audio. Measure calls, bookings, redemptions, and actual visits.
2: Ab hui na smart marketing.
4: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
5: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
6: So, ruko jara, sabar karo.
7: Agla gana. फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया.

favorite music on your favorite radio.

0: tracks that put you on the right track.
1: Awkward.

0: ow.
1: Masagali. Ow. Masagali. Ow.
2: Ah, dapat na.

फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात। 104

0: यू आर माई स्पेशल फ्रेंड।
1: रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
4: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनीशिया पे।
5: पंडित जी, दूल्हा है दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
6: अरे मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: L1, L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
3: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
3: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: अरे यार, घर मिल गया.
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
0: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.

गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: अरे यार, घर मिल गया.
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
3: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
4: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: Yaar, festival season aa raha hai. और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
7: कितनी लंबी लिस्ट है?
6: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
8: This festive season, India ko apne aur kareeb laaye with SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit SFLWorldwide.com.
9: Yaha pehle us aadmi ka sign lekar aao jisne mere haath pe ye likh diya tha.
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
11: Stop! Festive fashion check! Navratri ke outfits ready hai?
12: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
11: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat. Overtime.
12: To solution?
13: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Kapel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: I will have the world news coming up for you right after you finish listening to this track.
1: मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
2: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं। मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-27.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
4: Bhook lagi hai? Ya bas kuch exceptional khana hai?
5: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
2: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas. अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
7: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
8: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
6: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
9: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
9: Barista House, richness of biryani bliss.
10: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग डैलस. हर बार गुड आफ्टरनून बोलती हूँ, आज गुड मॉर्निंग बोल रही है आपकी होस्ट आयुषी फनीशा के स्टूडियो से. फनीशा 104.9 FM पे आपका फिर से एक बार स्वागत है. एंड आज मैं आपके साथ बड़े लंबे समय तक हूँ, तो बहुत कुछ नया और मज़ेदार करने वाले हैं हम, और आपको कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने भी सुनाने वाले हैं. टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक.

0: So here was this beautiful track in the voice of Sonu Nigam. And aap sun rahe hain apni host Ayushi ko Fun Asia 104.9 FM pe. Aaj studio mein hum thoda jaldi aa gaye hain kyunki aapko entertain jo karna tha. To aaj is gapshap gali mein aapko Ayushi ki awaaz sunne milegi kyunki yahan thodi si maine apni jagah bana li hai. Kabhi kabhi bana leti hu aur aapko is time pe bhi gaane suna deti hu. Filhal waqt ho raha hai chote se commercial break ka. जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और वापस आकर के आपकी फरमाइश लेंगे. आपको स्टूडियो का नंबर बता देते हैं 9722355555. आप कॉल करके अपने पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हो. कोई डेडिकेशन हो, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई रूठा हो, उसको मनाना हो, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो और अपने पसंद के गाने प्ले करवा सकते हो. तो फिलहाल जल्दी से जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे और वापस आके आपको सुनाएंगे कुछ खूबसूरत और मजेदार गाने.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
4: ये last Diwali पहना था, ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
5: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
6: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
7: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
6: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
8: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
9: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
10: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
9: Miss Clicks,
11: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
9: Customers कितने आए?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
13: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त था ना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी.

0: sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering paratha rolls. Or koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Har taste par, apna signature.
1: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
0: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
2: Heart to Heart, Fun Asia.
3: Heart to Heart, Fun Asia, 104.9 FM. Welcome back after this very short commercial break. Aur aap sun rahe hain apni host Ayushi ko. Aur aapko bahut hi pyare khoobsurat Bollywood gaane hum yahan se suna rahe hain. Aur ye safar kafi lamba chalne wala hai aaj. Main 1:30 baje tak hu aapko, to aapki pasand ke gaane aapko sunaungi. Bahut sari baatein karenge. कुछ विषयों पर चर्चा भी करेंगे, यू नो, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, कुछ मजेदार बातें, कुछ प्यारी प्यारी कहानियां जो आप मुझसे शेयर करते हैं. स्टूडियो का नंबर 9722355555 है. प्लीज़ कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए, गाने सुनिए और मूड को ऐसे ही बनाए रखिए, बिल्कुल बॉलीवुड वाला. हमारे यहाँ एक वर्ड है सिनेमा, और जो बहुत ज़्यादा सिनेमा देखता है ना, उसको बोलते हैं सिनेमची. ऐसा ही कुछ अजीब सा वर्ड है जो आप भी बोलते हैं.

सो बिल्कुल ही इस गाने ने पूरा वातावरण राममय कर दिया है। बड़ा ही सुंदर गाना, और आवाज़ थी श्रेया घोषाल की और अरिजीत सिंह की। जी हाँ, अभी भी अरिजीत सिंह की आवाज़ को हम सुन रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। और ये फिल्म आ रही है थिएटर्स में दिस दिवाली, दिवाली 2026। बड़ा ही कमाल होने वाला है। ये नमित मल्होत्रा की रामायण आ रही है, एंड यू नो इनका इन्होंने कहा है इट्स आर ट्रूथ आर हिस्ट्री। एंड आई एम सो ग्लैड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इट्स नॉट बींग कॉल्ड एज अ माइथोलॉजी, बिकॉज माइथोलॉजी में मिथ है और हमारे लिए ये हमारी हिस्ट्री है। रामायण महाभारत, ये महाभारत, रामायण और महाभारत हमारे लिए हमारी हिस्ट्री है, और इसको अब माइथोलॉजी बोलना बंद करना पड़ेगा। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगली खबर आपको देते हैं दृश्यम के बारे में। भाई देखिए, दृश्यम 3 आ रही है, अजय देवगन साहब फिर से आ रहे हैं। और ये जो है ना, मुझे पता नहीं था, मैं आउटडेटेड हो चुकी हूँ क्योंकि एडवांस बुकिंग हो रही है आज भी टिकट्स की, एंड आई गॉट दिस न्यूज़ दैट अजय देवगन दृश्यम इज जनरेटिंग सिग्निफिकेंट प्री रिलीज इंटरेस्ट, एंड ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं एडवांस बुकिंग से। आज भी एडवांस बुकिंग हो रही है। क्या आपको पता है, क्या यहाँ हमारे यहाँ डैलस में, प्लेनो में, फ्रिस्को में, जो भी थिएटर्स हैं आसपास, क्या वहाँ एडवांस बुकिंग हो रही है? हो रही है तो बताओ यार, हम भी जाके बुक कर ले रामायण और दृश्यम दोनों की टिकट। फिलहाल ये गाना लकी अली की आवाज़ में फ्रॉम दृश्यम।

0: लकी अली की आवाज़, दृश्यम का ये गाना, एंड आई एम सो ग्लैड टू सी हिम बैक ऑन बड़ा पर्दा. उनकी आवाज़ इस गाने में, मैं उनको सुन भी रही थी और देख भी रही थी, एंड फील्स नॉस्टैल्जिक अपने उस टाइम के सिंगर्स को फिर से देखना, यू नो, सामने से फिर से परफॉर्म करते हो. बिकॉज आई थिंक कुछ समय से लकी अली साहब नहीं देख रहे थे. सडनली ही केम ऑन इंस्टाग्राम, कहीं से किसी ने उनकी एक वीडियो भेजी, एंड अगेन इट ऑल बिकेम वायरल. एंड नाउ या ही इज़ हियर बैक सिंगिंग सम ब्यूटिफुल ट्रैक्स फॉर अस, एंड वी वॉन्ट टू हियर हिम मोर. बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने हैं लकी अली के जो हमने सुने हैं, यू नो, मैं बोल सकती हूँ मेरे बचपन में ही कहेंगे, टीनेज, चलिए, लकी अली के गाने बहुत सुने हैं और वो कैसेट्स हमने खरीदे हैं और क्या ही बताएं. तो दृश्यम आ रही है, टिकट बिक चुका है, प्री सेल हो रहा है, एडवांस बुकिंग्स हो रही हैं. हमको लग रहा है कि हम पता नहीं किस दुनिया में हैं, कुछ पता ही नहीं है हमको कि ये सब भी हो रहा है. साथ ही अगली जो न्यूज़ है या अपडेट है वो है अबाउट द वन. सो द वन मतलब वन, वन मतलब जंगल, वो वाला वन, नॉट द वन. वन सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना वाली, एकता कपूर के प्रोडक्शन के अंदर बनी हुई ये फिल्म, जो कि ऑलमोस्ट 3 दिन में 40 करोड़ से ज़्यादा का इंडियन रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है. एंड ओ आई थिंक इट्स 50 करोड़. इट हैज़ द फिल्म्स वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हैज़ क्रॉस 50 करोड़ इंडियन रुपीज़ सिर्फ 3 दिन में. मतलब सिनेमा अच्छा कर रहा है भाई, बहुत लोग देख रहे हैं इसको. हम तो ऐसे ऐसा वीडियो देख रहे हैं कि लोग हॉल के बाहर जूता चप्पल उतार के जा रहा है, जस्ट बिकॉज इस फिल्म में छठ के बारे में बात हुई है. और जब भी इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, एक बार छठ के बारे में बात कर ही देते हैं, इट्स वेरी क्लोज टू अस, वेरी क्लोज टू अवर हार्ट्स. आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दिस फिल्म एंड द छठ का जितना इसमें दिखाया गया है. बिकॉज यू नो, पता है हमारे यहाँ क्या मान्यता है, छठ के पहले ना छठ का गीत गाते तक नहीं है. इट्स सो मेनी रूल्स आ देयर, इट्स सो सीक्रेट कि मतलब जब वो समय शुरू होगा ना, छठ जब करीब आएगा तभी उसके गीत गाए जाएंगे, वरना बंद कर दिया जाएगा. एक तरफ मुझे बहुत सारी खुशी है कि बड़े पर्दे पे बिहार की किसी चीज़ को दिखाया जा रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग. लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना जैसी होती है वैसी रहनी चाहिए. एज एन अगर छठ के गाने छठ के पहले नहीं, बहुत सारे जो लोकल सिंगर्स हैं हमारे तरफ के, जिसको फोक सिंगर्स कहते हैं, या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि छठ के लिए गाने क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग भी ना इन छठ के सॉन्ग्स को कार्तिक मास में ही रिलीज़ करते हैं, नॉट बिफोर दैट. आई थिंक थोड़ा सा एकता जी टाइमिंग में गड़बड़ा गई हमको लग रहा है, मेरे हिसाब से. बट मूवी की बहुत तारीफ आ रही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग, तमन्ना की एक्टिंग के बारे में बहुत बात हो रही है, फिल्म अच्छा कर रही है. और यस, यही है इस फिल्म की जो न्यूज़ अपडेट जो हमें आपकी देखनी थी. यहाँ पे भी रिलीज़ हो चुकी है, सो आई थिंक जिन लोगों ने नहीं देखी है शुड गो एंड वॉच वन. दिस इज़ सम बॉलीवुड न्यूज़ फ्रॉम आयुषी. अभी ब्रेक पे जाके आके कुछ और खबरें आपको सुनाएंगे और साथ ही वन फिल्म का प्यारा सा गाना भी सुनाएंगे.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
5: लैपटॉप में.
4: इन्वेस्टमेंट?
5: गूगल ड्राइव.
4: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
5: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
4: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: It's the time to clock out.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: That garba was totally worth it. We had so much fun.
15: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
14: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
16: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
17: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
18: अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो
19: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
20: डील कहाँ?
19: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
6: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
21: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।
22: आपके सुहाने सफर का साथी Fun Asia Radio.
0: Fun Asia 104.9 FM में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और हम आपको बॉलीवुड की कुछ खबरें सुना रहे थे और भी खबरें लाइन अप करके रखी हैं, लेकिन पहले गाना लाइन अप करके रखा है। ब्रेक पे जाने के पहले हमने बात की वन फिल्म की और उसके गानों की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बड़ा अच्छा किया है, 3 दिन में 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो चुका है एंड मूवी इज़ गोइंग हाउसफुल एवरीवेयर, पीपल ऑल ओवर आर लाइकिंग इट एंड इट हैज़ अ सॉन्ग वेयर इन छठ पूजा इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एंड उस गाने का यूट्यूब पे 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हो चुका है। सो हियर इज़ दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर ऑल माई लवली लिसनर्स।
23: मेरी आस्था तो है, मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया हमें आशीर्वाद जरूर देंगी।

विशाल मिश्रा की आवाज में ये गाना, और अगले गाने की तरफ चलते हैं। आजकल जितनी भी डिवोशनल फिल्में बन रही हैं ना, ये बड़ी ही चल रही हैं। आई थिंक दैट्स हिटिंग द पॉइंट, जो लोग देखना चाह रहे हैं शायद वही है। क्योंकि इसके बाद मैं जिस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हूँ, फिल्म हनुमान अंश के बारे में है, जिसने 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस क्रॉस कर लिया है, 400 करोड़ इंडियन रुपीज़। दैट्स अ बिग अमाउंट। एंड इनिशियली इस फिल्म ने बिल्कुल भी सक्सेस नहीं किया था, मतलब ये फिल्म ऑलमोस्ट हॉल से उतरने ही वाली थी। कुछ 30-40 करोड़ का इनका बिजनेस था, एंड सडनली दिस फिल्म हैज़ टेकन अ बिग लीप और 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। दिस मूवी इज बेस्ड अराउंड नीम करोली बाबा एंड हैज़ क्रॉस्ड द वर्ल्ड वाइड मार्क ऑफ 400 करोड़ विथ रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड अर्निंग्स ऑफ अबाउट 404 करोड़ इंडियन रुपीज इन जस्ट 53 डेज। मतलब 2 महीने भी नहीं हुए हैं ढंग से, और पहला हफ्ता इसका इतना बुरा था इस फिल्म का कि लोग, मतलब ये फिल्म ऑलमोस्ट बैन, मतलब हटने वाली थी सिनेमा से, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बट सडनली दिस टुक अ बिग लीप एंड आज बहुत ही ज़्यादा लोग इसको देखना चाह रहे हैं, और यहाँ भी मैंने सुना है बहुत लोग देखा है। मैंने अभी तक नहीं देखी है फिल्म, सो टाइम ही नहीं मिलता यार। टॉडलर मॉम की कहानी अलग ही है जिंदगी में। बट येस, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक आउट टाइम एंड वॉच अ कपल ऑफ फिल्म जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑफ हनुमान अंश, बड़ा ही अच्छा गाना है, और इस गाने पे भी बड़ा ही वायरल हुआ है गाना, बहुत सारे रील्स बने हैं। तो मैंने पहले वहीं सुना था और फिर जा करके पूरा वर्जन सुना इसका।

0: कहाँ मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर?
1: ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: जय जय शिव शंभू। ये था हनुमान अंश का गाना साधु तिवारी की आवाज में, शिव पार्वती का ये मजेदार सा गाना बहुत ही फेमस हुआ है और हर तरफ इसकी चर्चा है, उस फिल्म की चर्चा है हनुमान अंश की, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी है सिर्फ और सिर्फ 53 दिन में 400 करोड़ का बिजनेस करके। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल बुककीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। यू कैन कॉल देम ऑन 4699429888 और विजिट agfintax.com टुडे। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशा 104.9 एफएम पे। आज स्टूडियो में जल्दी आ गई हूँ, एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, बॉलीवुड की कुछ खबरें ला रही हूँ। और अगली खबर ये है कि विद्या बालन इज रीयूनाइटिंग विद आर बाल्की। तो आर बाल्की और विद्या बालन ने 2009 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था पा, और 17 साल बाद दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू तमिल फिल्म एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसका जल्दी ही कोई हिंदी रीमेक तो बनेगा ही, एंड आई एम होपिंग टू सी विद्या बालन इन सम डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और पा में भी काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था उन्होंने, तो देखते हैं इस बार वो आर बाल्की साहब के साथ क्या लेकर के आ रही हैं। फिलहाल आपको लेकर के चलते हैं पा के उस गाने की तरफ जिसमें विद्या बालन है और उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन थे इस फिल्म में। टेकिंग यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक।

0: Hi.
1: Your son?
0: Yeah. Watch it.
1: Kya hua isko?
0: It's a chromosome glitch. हर इंसान में जेनेटिक कोड होता है क्रोमोसोम ए सी जी टी को मिलाकर हर शरीर में 3 बिलियन ऐसे कोड्स होते हैं कभी कभार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन 3 बिलियन में से किसी एक कोड में टी की जगह अगर गलती से सी ले लेता है तो उसे ऑरो कहते हैं लकी बॉय हाँ
1: बाय

0: पाप फिल्म का ये गाना शिल्पा राव की आवाज में। अब अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। बॉलीवुड खबरों का हुआ समय समाप्त। अगला गाना है रणबीर कपूर की फिल्म से। कल था उनका जन्मदिन, तो एक गाना तो उनके लिए बनता है भाई। रामायण में भी राम बन के आ रहे हैं। हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम हिज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ हिज, ये जवानी है दीवानी, बदतमीज दिल, आप लोगों के लिए ये रहा।
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: This was बॉम्बे वाइकिंग्स, हवा में उड़ता जाए फीचरिंग गौहर खान. तो ये गाना सुनकर के तो आप समझ ही गए होंगे ना कि हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है. हमारी गाड़ी जा रही है सिर्फ और सिर्फ इंडी पॉप की तरफ. अगले सेगमेंट में इंडी पॉप सुनाएंगे, बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे, पुरानी यादें डिस्कस करेंगे और आपसे फरमाइशें भी लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया 104.9 FM. फोन उठाइए, कॉल करिए, इंडी पॉप के जो आपके फेवरेट गाने हैं उसको मुझे बताइए, मैं प्ले करूंगी आपके लिए. स्टूडियो का नंबर 9722355555 है. ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं एंड देन अगले सेगमेंट में इंडी पॉप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ, आपके होस्ट आयुषी फनेशिया पे.
1: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: How may I help you?
6: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
5: Figure not. We have the perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
11: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
14: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
13: कैसे?
14: Page 3 eatery?
13: No, not another restaurant again.
14: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
13: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं.
15: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
16: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
18: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फनेशिया रेडियो.
19: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग.
0: वन ओ फोर पॉइंट नाइन एफएम. वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और हम आपको अब लेकर के जाने वाले हैं उस दौर में जिसको कहा जाता है इंडी पॉप का दौर. और कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, 90s में अपने बिल्कुल पीक पर था इंडी पॉप का दौर. लेकिन अगर इसकी बात करें तो शुरू हुआ ये, इसका अर्ली स्पार्क जो था वो अहमद रुश्दी साहब ने किया था 1966 व्हेन ही इंट्रोड्यूस द प्रोटो पॉप साउंड विद द सॉन्ग कोको करीना इन साउथ एशियन सिनेमा, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लाइटर मॉडर्न ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा फिल्मी ट्रैक्स. जी हाँ, तो पाकिस्तानी कलाकार हैं ये अहमद रुश्दी साहब, सब जानते हैं इनको. एंड ही ब्रॉट दिस सॉन्ग.

आई है खूबसूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को दीना मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को दीना

पेट खाई है एक सूरत मत वाली थी, ना दुखती चरती ली थी, मालूम की भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं, यता पता मालूम नहीं।

So to understand the indie pop कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इस गाने की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो उस समय उस दौर में 60s के दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब म्यूज़िक साथ में बनाया करते थे, कई सारे गाने, बहुत सारा म्यूज़िक इन्फ्लुएंस्ड होता था एक दूसरे से, वहीं पर ये गाना आया था जहाँ पर अहमद रुश्दी साहब ने पहली बार 1966 में इस गाने में थोड़ा सा एक अलग अंदाज पेश किया था, जिसमें पॉप म्यूज़िक कल्चर ने, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड म्यूज़िक ने पहली बार कदम रखा हमारी तरफ के सिनेमा में, हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों तरफ, और बड़ी ही धूम मचाई, बहुत ही अलग अंदाज से इसको अपनाया गया, एंड देन धीरे धीरे इस गानों को एक्सेप्ट किया गया, और ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक और इन सब के अलावा ये जो पॉप कल्चर था वो हमारे गानों में घुलता मिलता गया। देन केम द 80s, और 80s में हम सब जानते हैं कि नादिया हसन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया जो कि फिल्म कुर्बानी में था। जैसा मैं बता रही थी कि दोनों तरफ के लोग मिल करके म्यूज़िक बनाया करते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो सब कुछ एक ही जैसा, हमारे यहाँ म्यूज़िक भी एक है, खान पान भी एक है, लोग भी एक जैसे हैं। तो 80s में, कुर्बानी का ये गाना नाजिया हसन जी ने गाया, एंड दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, विच ऑल्सो क्रिएटेड वेरी वाइब्रेंट म्यूज़िक का सबके अंदर एक अलग जज्बा आया, और लोगों ने इन गानों को पसंद करना शुरू किया। सो द डिस्को रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द 80s। मैं आपको इस गाने की तरफ लेकर के चलती हूँ, उसके बाद फिर इस पर और बातें करेंगे हम।

1980 में एक 15 साल की पाकिस्तानी लड़की की आवाज ने इंडियन म्यूजिक सीन में एक ऐसा धमाका किया जिसका असर सिर्फ एक फिल्म तक नहीं रहा। नाजिया हसन जी का आप जैसा कोई सिर्फ कुर्बानी का हिट सॉन्ग नहीं था, इट बिकेम वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट हेल्प्ड ब्रिंग इंडियन मॉडर्न डिस्को पॉप इनटू द इंडियन मेन स्ट्रीम। और फिर 1981 में एक और गाना आया डिस्को दीवाने, जिसमें नाजिया जी को साउथ एशियन पॉप कल्चर का एक आइकॉनिक नाम बना दिया। तो इंडी पॉप आने के पहले जब डिस्को कल्चर बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुआ उस दौर की हम बात कर रहे हैं। एंड यस, द वॉइस अक्रॉस द बॉर्डर बिकेम द लव इन इंडिया। जी हाँ, लोगों ने उसको, उस आवाज़ को प्यार करना शुरू किया। और बस इसी तरह से नाजिया जी के गाने इंडिया में बहुत फेमस हुए। तो अगला गाना भी उनका ही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्को दीवाने, देन वी डेफिनेटली हैव टू प्ले दैट ट्रैक।

That was Alisha Chennai. Kaisi awaz, jisko humne bachpan se suna hai. And this song, Milind Soman the is gaane mein. So, aaj Bollywood se hat kar kuch laane ki koshish kar rahi hai aapke host Ayush aur hum. Aur baat kar rahe hai aaj indie pop ke baare mein. Indie pop kahan se shuru hua, kaise shuru hua? ये तो हमने आपको बता दिया. 60s में पाकिस्तानी एक हमारे सिंगर थे, उन्होंने स्टार्ट किया इसको. एंड देन नाजिया हसन जी ब्रॉट इट टू इंडिया विद द फिल्म कुर्बानी. और इन गानों ने इस कदर सबको दीवाना कर दिया कि भाई इंडिया में 1991 में जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया और चैनल्स आए बहुत सारे, जिसमें से था एक MTV इंडिया. द टाइम MTV इंडिया ओपन्ड, उसके बाद से उसने बहुत सारे उभरते कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां से उन्होंने इतने सुंदर और खूबसूरत गाने बनाना शुरू किया. उनमें से एक था मेड इन इंडिया. द एल्बम एंड द टाइटल ट्रैक बिकेम वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ 1990s इंडी पॉप. द म्यूजिक फीचर्ड Alisha Chennai, that we all know, and as the central star rather than a Bollywood heroine. Or shayad iske karan kuch competition bhi aaye, kuch naye chehre aaye. Logon ko in chehron ko cinema mein nahi dekhna tha, par gaanon mein dekhna tha, aur log inko bahut pasand karne lage. And definitely it gave Indian pop a very distinct identity. Indian pop, Indian imagery combined with contemporary electronic pop. Yahi se shuruaat hui indie pop ki. Aur sirf Alisha Chennai jaise singers nahi, kai sare aise चेहरे हमने देखे जो मॉडल्स थे, जो कि सिर्फ आपको रैंप पे दिखा करते थे, मॉडलिंग करते हुए स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में अपनी नाम अपनी पहचान बनाने के लिए, वो भी हमें दिखे. जैसे कि अभी इस गाने में मिलिंद सोमन साहब थे. और धीरे धीरे जब मैं आपको गाने सुनाऊंगी तो बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे चेहरे, जैसे बिपाशा बसु सोनू निगम के गाने में दिखी थी हमें पहली बार, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो उभर करके सामने आए. टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक. और ये भैया हमारे इंडी पॉप के एक बड़े ही मज़ेदार से सिंगर, जिन्होंने जिनके गाने आज मेरी गाड़ी में बैठ जा के सब ही दीवाने थे. तो चलिए उस गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चलते हैं.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोल की भी है
7: अरे सारे तो सेम है
6: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
7: ओ हाँ ये तो अलग है
8: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
11: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
12: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
11: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
12: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
11: ये क्या होता
12: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
17: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
2: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. आज इंडी पॉप पर चल रहा है हमारे स्टूडियो में. फोन उठाइए और अपने पसंद के गानों की फरमाइश करिए क्योंकि पहली पसंद आ चुकी है मेरे पास ऑलरेडी. बाबा साहब सहगल का गाना प्ले किया था मैंने ब्रेक पे जाने के पहले. एंड यस, ऐसा कहते हैं कि इज ओरिजिनल रैपर ऑफ इंडिया. भाई बिल्कुल वो पहले जो बोलते हैं ना गोट, दैट्स व्हाट ही इज. तो उन्हीं का एक और गाना है 1992 का, विच आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू. यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट एनी ऑफ द इंडी पॉप नंबर्स बाय कॉलिंग मी एट द स्टूडियो नंबर विच इज 972-235-5555.

सब मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स जब भी किसी फाइव स्टार होटल जाते हैं या तो खाने के लिए या किसी से मिलने के लिए और या किसी और काम के लिए जो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाता हूं जिसे सुनकर आप भी गुनगुनाएंगे।

ठंडे ठंडे पानी के बाद गर्मा गर्म खाने की बात, क्योंकि हो रहा है लंच टाइम, बहुत जोर से लगी है भूख। और अगर आप बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का या दाल मखनी, ये जो है ना, ये आपके टाइप के डिनर आपको लगते हैं या लंच लगता है, देन हेड टूवर्ड्स तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। एंड नाउ देयर इज अनदर रीजन टू गो फ्लेम आर, मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 8 to 5 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड रिसीव 1 complimentary appetizer. Visit tandooriflames.com for more details. तो भाई जाइए जल्दी से खाइए पीजिए, हम तो यहाँ शो कर रहे हैं, पर आप खाने का आनंद उठाइए। फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, और ये जो गाना है ये भी एक इंडी पॉप नंबर है, बिकॉज उसी का सिलसिला चल रहा है। 90s के दौर में कई उभरते सितारों ने इंडी पॉप के जरिए रखा बॉलीवुड में कदम, और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने भी बनाए उन लोगों ने। सो हियर इज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, रूप तेरा मस्ताना का रीमिक्स वर्जन जो है आपके लिए लेकर के आई है आपकी होस्ट आयुषी।

0: So here was this मजेदार track heading towards the next song, लेकिन ऐसे कैसे गाने पर ले जाएं आपको, पहले कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं भाई. No insurance or passion health out of network. Get affordable primary care with passion health direct for just $85 a month, including primary care, preventive care, medication management, telehealth and more. Call or text 214-666-6259. I repeat, that's 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. This program is not a health insurance. Eligibility restrictions do apply. Also, their Irving and Frisco location is open on Saturdays and Sundays too. So, Passion Health Primary Care tha ye. Agle gaane ki taraf aapko lekar ke chalte hain. Indie Pop, aaj बज रहा है फनेशा के स्टूडियो से. आपके होस्ट आयुषी आपको एंटरटेन करना चाह रही है कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ. और जैसा कि मैंने कहा कि इंडी पॉप में नए गाने नहीं बने, पुराने गानों को नए तरीके से सिर्फ बनाया ही नहीं गया, कई सारे नए चेहरे भी उभर के आए. जैसे कि इस गाने में मलाइका अरोड़ा दिखी थी और इज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक गोरेनाला इश्क मिटा.
1: समझ गया?

Discover Sri Krishna Jewelers and explore a stunning handcrafted collection of gold, diamond, polki and more with designs for every occasion and every style. Visit by 131 Main Street, Suite 220, Frisco or call 430-231-1111. I repeat, it's 430-231-1111. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं भाई. देखिए, आप लोगों ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया है और बहुत सारे प्यारे गाने लाइन अप हो चुके हैं इंडी पॉप से. सो हियर इज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल माय लिसनर्स.

Attention, Texas business owners looking for smarter commercial energy solutions. Trustara Commercial, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. You're listening to your host on Financia 104.9 FM. Host ka naam hai Ayushi aur abhi chal rahe hain kuch mazedar indie pop numbers. फिलहाल हम आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं. अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ये भी एक रीमिक्स वर्जन है डीजे अकील का. और मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके साथ ही अपना गिव अवे कर दिया जाए. जी हाँ, फन पिज्जा किचन आपके लिए लेकर के आए हैं आप एक गिव अवे एंड यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड. सो द क्वेश्चन चेंजेस टुडे, मूवी के गाने बज नहीं रहे हैं, ये इंडी पॉप, तो मैं बस इतना जानना चाहूंगी कि इस गाने में कौन से चेहरे थे जिसे हमने देखे. अगर आप ये गेस कर पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा. वेरी ट्रेंडिंग फेस फ्रॉम द फिल्म फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट that first appear in this song. So गाना सुनिए और कोशिश करिए बताने की कि कौन है ये टीवी एक्ट्रेस जिसे हमने इस गाने में सुना था. एंड यू गेट अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सिंपल सा सवाल है.

0: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
1: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
0: Miss Clicks.
2: 100 logon ne click bhi kiya.
0: Customers kitne aaye?
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
4: Heere moti, main na chahu.
5: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
6: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
6: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
8: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
7: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को.
10: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
11: कितनी लंबी लिस्ट है?
10: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
11: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
12: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
13: We need to talk.
14: अब क्या हुआ?
13: Nothing. It's not you.
14: Oh no.
13: It's the distance.
14: Distance? We live 10 minutes apart.
13: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
15: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 AM ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
5: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और ब्रेक पे जाने के पहले एक प्यारा सा सवाल, छोटा सा सवाल, सिंपल सा सवाल पूछा था.
20: ऐसा मुझे लगा था, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे कॉल्स आएंगे, क्योंकि 90s का एक इंडी पॉप नंबर, एक रीमिक्स वर्जन, जिसपे मैंने एक टीवी सेलिब्रिटी का नाम पूछा था कि कौन है ये टीवी स्टार, और इतने कॉल्स आए कि पूछिए मत. सबसे पहले तो हम अपनी विनर का नाम बता दें, नादिया जी को मिला है आज का गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. तो भैया आप जा सकती हैं फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय, यू कैन एंजॉय देयर amazing pizza. Let me tell you that, you know, they have new flavor which is Mexican inspired pizza, fiesta veggie, fiery polo loco and seafood loaded sonar cameron. And starting this weekend, Fun Pizza Kitchen will be open till 3 a.m. तो भैया अगर आप मेरी तरह ना रात के पंछी हैं तो बस 3 a.m. पिज्जा और कहाँ मिलेगा. परफेक्ट फॉर दोज लेट नाइट आफ्टर गरबा कॉन्सर्ट्स एंड शोज अराउंड टाउन. भाई हाँ भाई, इस समय तो सब लोग बाहर हैं और गरबा में बिजी हैं, भूख लगी तो पहुँच जाओ फन पिज्जा किचन. सो नया स्वाद, द लेट नाइट क्रेविंग्स ऑल सॉर्टेड. विजिट फन पिज्जा किचन डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स एंड विजिट फन पिज्जा किचन डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स. दो बार बोल दिया मैंने आपके लिए. और $10 का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है नादिया जी को. यू कैन जस्ट कलेक्ट दिस गिफ्ट कार्ड फ्रॉम द फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं. हिंदी पॉप का अगर हम बैठ करके सारा गाना प्ले करने लगे ना तो शायद सुबह हो जाए, मतलब इतने प्यारे और खूबसूरत गाने हैं. बट टेकिंग यू टू इट्स दिस ब्यूटिफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ अनामिका.

अनामिका की आवाज इस गाने में, और हम ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर के आए हैं। बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आपकी ही फरमाइश है। द नेक्स्ट सॉन्ग, जब हम हिंदी पॉप की बात करते हैं, इंडी पॉप, हिंदी पॉप जो भी है उसकी बात करते हैं, तो 90s के अली हैदर के इस गाने को कैसे मिस कर सकते हैं यार। दिस इज सो नॉस्टैल्जिक।

पुरानी जीन्स, यार ये वो गाना है ना जो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक कर देता है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना। आपकी होस्ट आयुषी कुछ इंडी पॉप गाने लेकर के आई है, कुछ और गाने लाइंड अप हैं। मुझे लगता है अगले 15 मिनट तक हम सिर्फ और सिर्फ इंडी पॉप सुनेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट लास्ट 30 मिनट्स आई विल टेक ऑल द बॉलीवुड रिक्वेस्ट। फिलहाल शो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं, या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हैं, इफ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. अगले गाने की तरफ जल्दी से लेके चलते हैं आपको।

सुनीता राव की आवाज में ये गाना, एंड शी केम ऑन द स्क्रीन, यू नो, बहुत ही प्यारा सा चेहरा लेकर के, सुंदर सी आवाज़ लेकर के, और इतने प्यारे गाने इन्होंने हमें दिए हैं. वैसे ही एक और बैंड आया था उस दौर में, 90s के दौर में, जिसका नाम था बैंड ऑफ बॉयज. एंड वहाँ पे भी पांच लड़के साथ आए जिन्होंने एक बैंड क्रिएट किया, एंड दे मेड सम ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स.

बैंड ऑफ बॉयज का ये गाना, ऐसे ही बहुत सारे नए चेहरे, नई आवाज आई थी 90s में, एंड उसी से बना इंडी पॉप. और उसी समय आए थे लकी अली साहब भी, जो हैं तो महमूद के बेटे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद से ढूंढना को, मतलब खुद की पहचान बनाने की कोशिश की, एंड दैट वॉज थ्रू हिज म्यूजिक. सो हियर इज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ लकी अली.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
1: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
4: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
5: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के।
6: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
5: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
7: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
12: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
13: वेट अ मिनट, हु आर यू?
14: विद समवन से $100 क्रेडिट फॉर पिज्जा? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
15: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
16: Every home has a story. Let's create yours together.
17: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
18: Welcome back after this very short commercial break. और आपकी होस्ट आयुषी आपका स्वागत कर रही है अपने अगले सेगमेंट में। हमने बहुत सारे प्यारे इंडी पॉप नंबर्स सुने और इंजॉय किया। बहुत सारी आपकी फरमाइश पर थे, कुछ मेरी पसंद के थे, बट यस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड इस सेगमेंट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चल रहे हैं कुछ और बॉलीवुड गानों की तरफ। वापस से अपना प्यारा बॉलीवुड और रोमांटिक नंबर्स लेकर के आई है आपकी होस्ट आयुषी।

तो बैक टू बैक दो बहुत ही प्यारे गाने लेके आए थे आपके होस्ट आयुषी आपके लिए, और अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का, बिकॉज मात्र 10 मिनट बचे हैं स्टूडियो में। कुछ और अच्छे गाने आपके लिए प्ले करूंगी और फिर यहाँ पर होंगी हमारी प्यारी सुनहरी किरण, जो कि बहुत ही प्यारा सा शो लेकर के आती हैं। तो कहीं मत जाएगा, ट्यून इन करके रखिए। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG Fintax, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. आप इनको कॉल कर सकते हैं इनके नंबर पे जो कि है 4699429888, और यू कैन विजिट agfintax.com today. Taking you towards a beautiful track in the voice of Arijit.

So here was this track from Gabbar Is Back featuring Akshay Kumar and Kareena Kapoor. तो भैया जाने का समय हो चुका है, अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ये भी अक्षय और करीना का ही गाना है और आपको बताना है फिल्म का नाम, तो हम देंगे आपको एक गिव अवे। तो जल्दी से स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, एंड हैज योर चांस टू विन $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर, प्लस एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली for lunch only, located in located off McDermott Drive in Allen. Visit chandigarhbites.com for details. तो ये रहा अगला गाना, फिल्म का नाम बताइए, इसमें मैंने आपको बता ही दिया एक्टर्स और एक्ट्रेस कौन है, बस कॉल करिए, मूवी का नाम बताइए और लेकर के जाइए $10 off on a dine-in bill of $50.

0: I'm still waiting for the right answer. Let me give you a hint here. आज क्या हो गया है सबको? अक्षय कुमार, करीना कपूर और सैफ अली खान है इस फिल्म में. फिल्म का नाम बताइए और लेकर के जाइए $10 ऑफ का ये गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से.
1: I know, I laugh funnily. In fact, I am a bit of a dick. And nothing ever will change it. If you be mine forever more, like Beckham, I will bend it ever and ever forever.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for tuning in and thank you Ayushi for an absolutely beautiful show as always. Acha ji, वैसे आप मुझे सुनते हैं afternoon drive time with Sunehri Kiran में 2:30 PM till 5 PM. आज है lucky day because I am connected with you for one more hour. यानी कि 1:30 से लेके 5 बजे तक मैं हूँ आपके साथ और आप भी हैं मेरे साथ. 972-235-5555 is the number to the studio. ये एक घंटा, वैसे आप जानते हैं आज Tuesday है. Tuesday is dedicated to Bollywood spotlight. हम डालेंगे spotlight कुछ सितारों पे, लेकिन that will start from 2:30 onwards. 1:30 till 2:30 लेके आई हूँ आपके लिए कुछ मुख्तलिफ मूड्स के मुख्तलिफ गाने, यानी कि जो आपका मूड है उस मूड के हिसाब से हम अपने गानों को स्विच करते जाएंगे. ये जो पहला मूड मैंने पिक किया है ये है जी थोड़ा सा हैप्पी मूड, थोड़ा सा फेस्टिव मूड. लेट अस सी व्हाट वी हैव लाइंड अप फॉर यू. अगर आपका कोई फेस्टिव बॉलीवुड और हिंदी, दैट इज माई वन रिक्वेस्ट यू हैव टू स्टे टू और स्टिक टू. अगर आपका कोई मूड का, फेस्टिव मूड का कोई गाना है जो कि फिल्मी है, सो मुझे कॉल करके बताइए. 972-235-5555. Once again, good afternoon and welcome.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप ये एक्स्ट्रा वन आवर स्पेशल विद मी, और ये है जी हमारा मूड स्पेशल। लेकर आई हूँ आपके लिए, खुशी का अपना गाना होता है, प्यार का अपना गाना होता है, शादी के अपने गाने होते हैं, दोस्ती के अपने गाने होते हैं, जुदाई के भी अपने ही गाने होते हैं, हार्ट ब्रेक के तो खैर गाने होते ही मुख्तलिफ हैं। तो ये थोड़े से इमोशंस के फ्लेवर्स जो हैं वो आज हम टच करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद दिस फेस्टिव। वैसे घंटा बहुत कम है, लेकिन अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिला आपके साथ तो ये सारे इमोशंस हम एक एक करके जरूर कवर करेंगे। फिलहाल फेस्टिव इमोशंस से हमने शुरू किया है, सो आई एम गोइंग टू प्ले अ कपल ऑफ फेस्टिव सॉन्ग्स फॉर यू। लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले करने लगी हूँ, उससे पहले आपको बताऊं जी कि अगर आप अपने ख्वाबों का घर खरीदना चाहते हैं तो ड्रीम होम मॉर्गेज इज द प्लेस जहां आपको कॉन्टैक्ट करना है। 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज और उनकी टीम हेल्प कर रही है फैमिलीज को टू अचीव देयर होम ओनरशिप ड्रीम। पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं, रीफाइनेंसिंग हो, बाइंग अ न्यू होम हो, अपग्रेडिंग अ हाउस हो, कमर्शियल नीड्स भी, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ड्रीम होम मॉर्गेज इज हेयर टू हेल्प यू। लॉग ऑन टू देयर वेबसाइट टू चेक आउट मोर अबाउट देम, dreamhomemortgage.com इज दैट वेबसाइट, या फिर 972-245-5626। वंस अगेन द नंबर इज 972-245-5626। 1:30 PM टिल 2:30 PM दिस इज मूड्स स्पेशल, यानी कि आपके मूड में क्या चल रहा है।

फेस्टिव हो और बॉलीवुड म्यूजिक ना हो, ये तो है जी इम्पॉसिबल बात. जी हाँ, चाहे नवरात्रि हो, गरबा हो, डांडिया नाइट हो, दिवाली सेलिब्रेशंस हो या फिर शादी का डांस फ्लोर हो, बॉलीवुड ने हर सेलिब्रेशन को दिया है एक साउंड ट्रैक. और कुछ ऐसे ही साउंड ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. आज हमने इस वक्त जो ये अगला 10 मिनट आप कह लीजिए मजीद या आधा घंटा, हमने मूड चुना था फेस्टिव मूड और कुछ बॉलीवुड के फेस्टिव गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. पार्टी इज समथिंग एल्स, दिस इज एक्सक्लूसिवली फेस्टिव, कोई फेस्टिवल हो रहा है. तो अब जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव सॉन्ग्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ये गाना. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जी, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो ऑफर करते हैं आपको ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. आप इंडिविजुअल हैं, आपका स्टार्टअप है, आपका अपना एस्टैब्लिश बिजनेस है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एजी फिनटेक्स कैन हेल्प यू, गाइड यू. देयर्स नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल एंड डिस्कसिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. दे विल क्रिएट पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर यू. कॉल देम 4699429888. वंस अगेन दैट नंबर इज 4699429888. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज AG. fintax.com.

Well, that was an absolutely powerful number. सुन रहे हैं आप मूड स्पेशल और मूड स्पेशल में फेस्टिव सीजन इस वक्त जो फेस्टिव स्पेशल्स हैं दो चार गाने आपके लिए लेकर आई हूँ. गाने तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन जस्ट यू नो वी गोना कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. अगला गाना जो आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो भी एक बहुत ही प्यारा गाना, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ फॉर 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ बिन केयरिंग फॉर आर कम्युनिटी. और अब एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल, अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड लोकेशन इन फ्रिस्को. जी हाँ, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्या. यहाँ आपको मिलेगी प्राइमरी केयर एंड अर्जेंट केयर टू इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, आपने कार्डियक डायग्नोस्टिक कराना है वो भी अवेलेबल है, और इसी के साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल. लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स अ वाइड रेंज ऑफ केयर टुगेदर अंडर वन रूफ. तो सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है डिफरेंट चीजें कराने के लिए. और जो सबसे कन्वीनियंट बात है वो ये कि दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM. तो अगर आपको अपनी केयर करनी है या करवानी है तो जस्ट वॉक इन, नो अपॉइंटमेंट नीडेड एज वेल. सो लिनॉक्सी मेडिकल, LUNOXY, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कन्वीनियंट आवर्स के साथ आपके लिए मौजूद है. दिस इज अ नेम यू कैन काउंट ऑन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
12: तारीख पर तारीख।
13: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
14: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
14: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
20: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फनीशा रेडियो।
21: डालस की धड़कन 104.9 FM Fun Asia Radio.
22: Why not?

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप, और ये आधा घंटा मतलब हम मूड स्पेशल कर रहे थे, और अभी अगला आधा घंटा भी वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम मूड्स, और उसके बाद 2:30 से ऑनवर्ड्स आपके लिए लेकर आऊंगी बॉलीवुड स्पॉटलाइट। तो जी, अभी हमने मूड किया फेस्टिव मूड, कुछ आपको बॉलीवुड के फेस्टिव गाने सुनाए जैसे कि चुगाड़ा तारा या फिर ढोलीदा या फिर और भी बहुत सारे गाने आपके लिए प्ले किए, और अब हम मूव कर रहे हैं कुछ शादी ब्याह के यू नो मूड की तरफ, यानी कि आपके घर में कोई शादी होती है तो ये गाने वो गाने हैं जो जरूर कहीं ना कहीं हमारे इवेंट्स पे प्ले किए जाते हैं। कोई मतलब शादी ब्याह का घर तो वैसे ही आपको पता है कि कितना मसरूफ होता है, कोई डेकोरेशन संभाल रहा होता है, कोई गेस्ट लिस्ट देख रहा होता है, कोई कपड़े, फोटोग्राफर, डीजे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि गाने कौन से प्ले किए जाएंगे। खाना तो होता ही है लेकिन साथ गाने भी बहुत वैल्यू रखते हैं, तो कुछ ऐसे ही खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आई हूं, और वो गाने जो हमें याद दिलाते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत लम्हों की जिनमें या तो हम जिनसे गुजर चुके हैं या फिर जिनका हिस्सा रह चुके हैं।

ऑलराइट जी, मूड हमारा है कुछ शादी ब्याह के गानों का और इस पे हम फोकस कर रहे हैं और लेके आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से जो कि एलन में लोकेटेड हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं, दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन और बहुत ही अमेजिंग उनका मेन्यू है। चेकआउट कीजिए chandigarhbites.com पे लॉग ऑन करके, यू विल फाइंड सो मेनी डिटेल्स अबाउट देम। और एक और स्पेशल बात बिफोर वी गो टू द गिव अवे इज देयर स्पेशल लंच थाली जो कि मंडे थ्रू फ्राइडे जो है रोटेट होती है, डिशेस रोटेट होती हैं उसकी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पांचों दिन भी जाएंगे वहां पे लंच करने तो आपको कुछ डिफरेंट और नया खाने को मिलेगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर द स्पेशल थाली जो कि वो लंच ओनली स्पेशल करते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे। और अब आपके पास मौका है ये $10 जीतने का या $10 ऑफ हासिल करने का ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। तो आप वहां जाइएगा, $50 स्पेंड करेंगे एंड इफ यू आर द विनर देन यू विल गेट $10 ऑफ। और क्या करना है जी, कुछ वेडिंग स्पेशल कर रहे हैं, मूड थोड़ा सा वेडिंग की तरफ मूव कर दिया है हमने, तो मुझे बताइए 9722355555 पे कॉल करके कि बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा आपका वेडिंग नंबर कौन सा है। क्या आप ये कहें कि जी शादी हो रही है, कोई डांस पार्टी हो रही है शादी की, या कोई डीजे कुछ गाना बजा रहे, तो ये गाना तो शादी में प्ले होना ही चाहिए। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

शादी ब्याह की बात हो रही हो और मेहंदी लगा के रखना की बात ना हो, ये वाली बात थोड़ी सी मुश्किल है जी. वन ऑफ दोज मोस्ट प्लेड वेडिंग सॉन्ग्स. अब तो खैर गानों का थोड़ा रुख बदल गया है, स्टाइल बदल गया है, मगर फिर भी मेहंदी तो मेहंदी है, लगा के भी रखनी है और इंतजार भी करना है. तो जी इस गाने के साथ आपके लिए गिव अवे आया था चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. $10 ऑफ आपको मिल सकता था ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. यू हैड टू टेल मी आपका कौन सा पसंदीदा गाना है. देखिए जी, जिस सीक्वेंस में आप मुझे कॉल करते हैं वो नंबर आपको एक असाइन होता है, वो एक मैथ के फॉर्मूले में डलता है और आपकी विन असाइन होती है. तो आपकी लक ही फैसला करती है कि आप जीते हैं या नहीं, मैं फैसला नहीं करती. मेरे लिए आप सब इंपॉर्टेंट हैं और आप सब ही विनर्स हैं. आपने मुझे फोन कॉल की, यही काफी है मेरे लिए आपके विन के लिए. आज की जो हमारी लकी विनर, जो कुछ गाने मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे यार की शादी है या फिर मेहंदी है रचने वाली या फिर जूते दो पैसे लो या फिर गल्ला गुड़िया लंदन थमकदा, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे और मजे मजे के गानों के नाम हमें आए. तो आज की हमारी लकी विनर है फरा आलम. फरा कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइट्स पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड अवेल योर $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आप तमाम लोग जिन्होंने हमें फोन कॉल किया, पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. शादी ब्याह की बात हो और जूते दो और पैसे लो की बात ना, ये मुमकिन नहीं है.

यहाँ जूता छुपाई का ये गाना तो शादी ब्याह के फेस्टिव सीजन में चलता ही है. दूल्हा सोच रहा होता है कि भाई अब तो शादी हो गई, पार्टी शुरू, लेकिन दुल्हन की सिस्टर्स को ये परेशानी होती है कि निगोसिएशन कब शुरू होगी और कितने पे जाके बात सेटल होगी. कुछ ऐसा ही गाना हम आपके हैं कौन का ये जूते दो पैसे लो, एन आइकॉनिक नंबर फॉर दैट मोमेंट. अच्छा जी, अगला गाना मैं जल्दी से आपके लिए प्ले कर रही हूँ, और ये भी एक बहुत ही प्यारा गाना है जिसमें हमें इमोशंस नजर आते हैं. जब शादी ब्याह का सीजन होता है, द इमोशंस ऑफ द फैमिली टूवर्ड्स द डॉटर, दिस इज माही बे.

Welcome back. You are tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Aur aaj hai ji Tuesday. Tuesday ko lekar aati hoon aapke liye Bollywood Spotlight. Spotlight dali jati hai ek ya do sitaron pe jin ne apne kaam se hame kuch behtareen Bollywood ka music diya. Main aur aap us music ko sunte hain, enjoy karte hain. We love talking about that music and that is what we cover in Bollywood Spotlight. Aur aaj ka jo ye pehla ek ghanta hai या एक डेढ़ घंटा आप कह लीजिए, इसमें स्पॉटलाइट डाली है हमने एक ऐसे शख्स पे जो मतलब एक टाइम था जब बंदा कहता था कि बॉलीवुड में आने के लिए आपको बहुत टॉल होना चाहिए या वो ग्रीक गॉड लुक होना चाहिए या परफेक्ट है या परफेक्ट बॉडी, लेकिन ही वॉज जस्ट अ बॉय नेक्स्ट डोर जो कि यू नो पानीदा रंग वाली मूवी से जिन्होंने अपना आगाज किया, एक वेरी ही डिफरेंट फिल्म जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक किसी हीरो ने उस स्टोरी या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने की कोशिश की थी. उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में हमें दी जिसमें हमें कन्वेंशनल हीरो कभी नजर नहीं आते. दिस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट अनकन्वेंशनल हीरोज जिन्होंने की हैं कुछ बहुत ही अनकन्वेंशनल फिल्में. दिस इज आयुष्मान खुराना.

अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है तो भी हेल्थ केयर आपके स्केड्यूल में फिट इन हो सकता है, एंड दैट टू विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉक्टर शेरल शमाथल ये हैं जी मौजूद आपके लिए. शी इज अ बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन, नाउ अवेलेबल एवरी सैटरडे फ्रॉम 9 AM टिल 1 PM एट द अर्विंग लोकेशन. सबसे पहले आपको लोकेशन बताती चलूं, 230 ओकोनर रिज बुलेवार्ड, 110 Irving, Texas 75038. यहाँ पे डॉक्टर शेरल

मास्टर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन. और थिएटर जो है वो इनकी अर्ली डेवलपमेंट का बहुत मेजर हिस्सा रहा है. लेकिन आयुष्मान खुराना के करियर का आगाज हुआ रेडियो से. जी हाँ, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वैसे ही कभी या इंडिया में सब इन्हें सुना करते थे. रेडियो जॉकी बने और वहां से फिर इन्होंने टेलीविजन तक का सफर किया. सो ही बिकेम नोन एज टेलीविजन होस्ट और वीजे एंड इवेंचुअली होस्टेड शोज इंक्लूडिंग MTV's यूथ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि आयुष्मान का जो सफर है वो बॉलीवुड के हीरो से पहले कम्युनिकेशंस था, जैसे कि हम रेडियो के पीछे बैठ के करते हैं, या ही वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर होस्ट. मैं भी उनको फिल्मों से पहले कई बार मैंने उनको होस्टिंग करते देखा था बड़े बड़े इवेंट्स, एंड दैट इज हाउ आई न्यू आयुष्मान खुराना. तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे, और आपने मुझे ये बताना है कि आपको आयुष्मान खुराना एज अ हीरो आपने उन्हें पहली बार देखा, या एज अ सिंगर उन्हें पहली बार सुना, या एज अ रेडियो जॉकी पहली बार सुना, या फिर टीवी होस्ट आपने उनको कैसे पहली बार सुना. मैंने उनको सुना था टीवी पे शो होस्ट करते हुए. और इन चारों जो चार पांच चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इनमें से कौन सा आपका पहला था, और लेकिन आपको आयुष्मान खुराना का बेस्ट क्या लगता है. 9722355555 है नंबर. लेकिन ये तो बता दूं आपको कि आपके लिए गिव अवे क्या आया है. डक टाइम की तरफ से 50% ऑफ मिलेगा आपको ऑन योर ड्रायर वेंट क्लीनिंग. ये इंपॉर्टेंट है जी, ड्रायर वेंट क्लीनिंग पे आपको मिलेगा 50% ऑफ. ड्रायर वेंट सबसे ज्यादा गंदे होते हैं घर में, सो ये 50% आपको ऑफ मिल सकता है बाय कॉलिंग मी एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, डक टाइम अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे आर वेरी पॉपुलर इन डैलस, दे हैव सम अमेजिंग रिव्यूज. आपको डक्ट क्लीनिंग क्यों करानी है, ऑफकोर्स बिकॉज डस्ट रिमूव होती है, वेंट्स क्लॉग्ड वेंट्स क्लियर होते हैं, एयर फ्लो इंप्रूव होती है, खासतौर पर फायर हैजर्ड्स के जो प्रॉबिबिलिटीज हैं वो रिड्यूस होती हैं. कॉल जीतू पटेल ऑफ डक टाइम 9728772500, 9728772500. जीतू पटेल का नंबर जो डक टाइम पे आप कॉल कीजिए इनको, और अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक कीजिए, और मुझे कॉल कीजिए टू विन दिस 50% ऑफ ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. आयुष्मान का कौन सा रोल आपने सबसे पहले देखा, और क्या है आपको सबसे ज्यादा पसंद.

विकी टोनर से एंट्री ली फिल्मों में और वो जो गाना आपके लिए पानीदार रंग प्ले किया और ये दूसरी फिल्म का गाना जो इनके करियर की थी एंड दैट फिल्म वाज नौटंकी साला, इसका भी ये गाना आयुष्मान खुराना की अपनी आवाज में उन्होंने गाया था. सो विकी टोनर में एंट्री लेने से पहले, मतलब यहाँ से इनका करियर शुरू नहीं हुआ, इससे बहुत पहले इनका करियर शुरू हो चुका था. आयुष्मान खुराना वॉज बोर्न इन चंडीगढ़ इन 1984. निशांत खुराना इनका नाम रखा गया. ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एंड लेटर कम्प्लीटेड

दम लगा के हर्षा 2015 में आई जी आयुष्मान खुराना की ये फिल्म एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म. एक बड़ी ही डिफरेंट कहानी और एक बार फिर जैसे हम बात कर रहे थे बहुत ही एक अनकन्वेंशनल हीरो हैं जो कि अनकन्वेंशनल फिल्मों में काम करके ही मेरे और आपके दिलों में जा बसे हैं. अजय जी आपके लिए लेकर आई थी गिव अवे फ्रॉम डक टाइम. दिस वॉज अ 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग और आपसे पूछा था कि आपको आयुष्मान खुराना का कौन सा रूप सबसे अच्छा लगता है. वो रेडियो जॉकी थे, वो एक होस्ट थे, वो एक टीवी यू नो स्टार थे, यानी कि वो वीजे थे, डीजे थे, मतलब सब कुछ थे और उसके बाद वो एक्टर भी बने, सिंगर भी बने. तो कौन सा रूप आपको लगा सबसे अच्छा? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड फॉर पार्टिसिपेशन. हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो हैं अरुण कुमार. अरुण कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर डक टाइम पे पहुंचाने के लिए एंड देन समवन विल गेट बैक टू यू आइदर बाय फोन और थ्रू योर ईमेल. सो प्लीज कीप अ लुक आउट ऑन दैट. अच्छा जी, तो आयुष्मान खुराना का जैसे अरुण ने भी कहा और आप तमाम लोग जिन्होंने फोन करके बताया कि कुछ लोगों ने उनको अवार्ड सेरेमनीज होस्ट करते हुए पहली बार देखा था, कुछ ने उन्हें डीजे के दिए. लेकिन अरुण की कहानी है कि वो भी चंडीगढ़ को ही बिलोंग करते हैं, उसी शहर उसी जगह को जहां आयुष्मान बिलोंग करते हैं. और उससे पहले, ये सारी चीजों से पहले, उनके फादर का एक शो आया करता था पंडित जी का और वो जो है बिगनिंग या उसकी होस्टिंग जो है वो अरुण की ये करते थे आयुष्मान खुराना. और वहां से उनको अरुण ने देखा हुआ है और वही सिलसिला जो आगे बढ़ा वो इट्स जस्ट नेवर स्टॉपिंग, वो कहते हैं ना नेवर एंडिंग. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, जो आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो ये है दैट ही हैज द एबिलिटी टू साउंड and act like an ordinary next door guy. जैसे एक regular Indian बंदा है, देसी बंदा होता है regular, जो मुझे और आपको अपने मोहल्ले में मिलते हुए नजर आते हैं. That is the gist या उनकी जो खासा है आयुष्मान का वो ये है कि बड़ी खूबसूरती से वो एक आम बंदे की अक्कासी करते हैं. That is आयुष्मान खुराना for you.

104.9 FM फनीशर रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में बॉलीवुड स्पॉटलाइट आयुष्मान खुराना पे डाली है आज हमने स्पॉटलाइट. सितंबर में पैदा हुए जी और कुछ बेहतरीन गाने उन पे पिक्चराइज्ड मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स भी देती जा रही हूँ. जैसे कि अगर आपको अपनी आपका यू नो फाइनेंसिस कंट्रोल में लाने हैं, जैसे कि यू आर लुकिंग फॉर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग, कुछ भी आपने अपनी फाइनेंसेस के लिए करना है तो सीपीए सुधीर पाई इज अवेलेबल फॉर यू एट माई टाइम एक्विटी. mytimeequity.com आप यहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन लुक अप द वेबसाइट, देर इज सो मच डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट देयर. और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो ये नंबर नोट कीजिए, गिव दम अ कॉल. दिस इज 4697021272 4697021272. फिल्मों में आने से पहले, हीरो बनने से पहले आयुष्मान खुराना का सफर काफी डिफरेंट रहा. काफी सारी चीजें उन्होंने की, जैसे कि रेडियो किया जिसने उन्हें ऑफकोर्स टाइमिंग सिखाई, टेलीविजन किया जिसने उन्हें कैमरे में कॉन्फिडेंस दिया, थिएटर किया जिसने उन्हें एक्टिंग सिखाई, और ये तीनों चीजें मिलके उन्होंने बॉलीवुड में बनाई अपनी आइडेंटिटी. तो मतलब जब उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी या बॉलीवुड में उनको नहीं मिल रहा था काम, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर थोड़ा सा ड्रॉबैक मिले या फॉल बैक मिले तो हम कहते हैं कि व्हाई आर्न्ट वी गेटिंग सक्सेस. बट आई गेस दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लर्निंग, कि एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज इम्प्रूविंग यू टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड टू रीच द स्टार्स जिन पे आपने अपनी नजर रखी हुई है. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ आयुष्मान खुराना. और फिर आई उनकी जिंदगी में विकी डोनर. सब लोगों ने नोटिस किया उन्हें, सच अ टैलेंटेड यंग चार्मिंग मैन, इसको तो बॉलीवुड में होना चाहिए. और विकी डोनर का गाना तो मैंने आपके लिए प्ले कर ही दिया. पहली फिल्म, एक अजीब सी फिल्म, एक डिफरेंट फिल्म, वेरी अनकन्वेंशनल, बट दैट मेड आयुष्मान खुराना अ स्टार.

और इसी के साथ आपको जी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये देती चलूं कि अगर आप किसी ट्रक या कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, कोई भी इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट है, तो आपको एक ऐसा अटॉर्नी चाहिए जो आपकी साइड से आपके केस को फाइल करे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करे, पेपर वर्क के साथ डील करे, द लीगैलिटीज, द इंटीग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, देर इज सो मच दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स जो हमें कई बार पता भी नहीं होता. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. जी हाँ, अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम आपके लिए आपका केस फाइट करेगी. दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेस्ट बात है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते. सो फॉर दिस विन विन सिचुएशन, खास तौर पे इस परेशानी के मामले में अगर आप गुजर रहे हैं इससे, तो राहत की खबर आपको दे रही हूँ. अटर्नी उमर ख्वाजा से कॉन्टैक्ट कीजिए. द नंबर इज 4693005046, 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अटर्नी उमर OMAR attorneyumar.com. अच्छा जी, विकी डोनर से अपनी प्रेजेंस का तो एहसास आयुष्मान ने दिला ही दिया. फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में कदम रखा, जैसे कि कैरेक्टर हीरो नहीं बनना, खाली कैरेक्टर हीरो बनना है. नौटंकी साला की 2013 में, बेवकूफियां की 2014 में, हवाई ज्यादा की 2015 में, लेकिन ये सारी ही फिल्में उनको कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं दे पाई. फिर आई उनकी मूवी दम लगा के हैशा. यहां आयुष्मान ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया दैट ही allowed his character to be absolutely imperfect. भूमि पडनेकर्स के साथ उन्होंने एक ऐसे, ऑफ कोर्स अगर आपको कहानी याद है, एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो हु गॉट मैरिड टू हर एंड द रिलेशनशिप इज शेप्ड बाय द सोशल एक्सपेक्टेशंस और अपीयरेंसेस एंड बॉडी इमेज एंड ऑल दैट स्टफ. और सडनली ऑडियंसेस को कुछ डिफरेंट देखने को मिला. आयुष्मान कुड मेक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स फील एब्सोल्युटली सिनेमैटिक. एंड दैट इज वेयर ये तय हो गया कि अब तो आयुष्मान का यही फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? टैबू टॉपिक्स और आयुष्मान खुराना.

तो टैबू टॉपिक्स हैं, कौन करेगा, आयुष्मान खुराना करेगा, जैसे कि शुभ मंगल सावधान में आपने देखा, और इस तरह से ये टैबू टॉपिक्स करते करते एक फिल्म आई अंधाधुन, दैट वॉज जस्ट अनदर लेवल. आयुष्मान प्लेड अ पियानिस्ट जो क्लेम करता है कि वो ब्लाइंड है. ऑडियंस परेशान रहती है जी, कॉन्स्टेंटली हम अपने दिमाग में पूछ रहे थे कि भाई ये वाकई ब्लाइंड है, इनको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चक्कर क्या है, चल क्या रहा है. हिज परफॉर्मेंस बिकेम वन ऑफ द डिफाइनिंग अचीवमेंट्स ऑफ हिज करियर, और ही शेयर्ड फॉर दिस मूवी, ही शेयर्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर अंधाधुन विद विक्की कौशल. तो यू नो, कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में जो आयुष्मान खुराना ने की, और उन पे पिक्चराइज्ड कुछ बेहतरीन गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ.

0: और अगर आपके दिल के दिल में ख्वाहिश हो रही है टू ईट द बोल्ड फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ, तो मैं बताती हूँ आपको, डिलिशियस एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए एट पेज 3 ईटरी लोकेटेड एट हब 121 इन मेकनी. फ्रॉम टैंगी फ्लेवरफुल चाट्स टू जूसी कबाब्स टू स्मोकी तंदूर स्पेशलिटीज, एरोमेटिक बिरयानीज और साथ ही साथ रिफ्रेशिंग हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स, पेज 3 ईटरी लेकर आता है आपके लिए द वाइब्रेंट टेस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेट टू योर प्लेट. एंड प्लेट भी ऐसी खूबसूरती से सजी हुई कि आप उसको देख के कहेंगे पहले पिक्चर लेनी है फिर खाना खाना है. परफेक्ट फॉर डिनर डेट, नाइट आउट विद फ्रेंड्स, या सिंपली यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिस्फाइंग दोज देसी क्रेविंग्स दैट यू आर हैविंग. सो तैयार हो जाइए टू टेस्ट ऑल दीज थिंग्स. विजिट पेज 3 ईटरी एट हब 121 या फिर एक्सप्लोर कीजिए उनका मेन्यू. फाइंड आउट व्हाट दे आर ऑफरिंग, दैट इज पेज 3 ईटरी.com. 3 as in number 3, page3eatery.com. They have big flavors for your cravings. This is your favorite destination. अच्छा जी, ये गाना लिया गया है एक और खूबसूरत फिल्म से जो कि रिलीज हुई और हमने देखा बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे कोई मोहल्ले में पड़ोस में कोई ऐसी कहानी हुई हो. यही आयुष्मान की खासियत है.
1: Oof, oof, oof.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the USG. Aapko dete hain bahut sari advices and services, trusted tax service or advice, accounting, payroll, bookkeeping aur saath hi saath business advisory services bhi. Aap individual hain, aapka apna startup hai, you have established business, anything and everything, AG Fintechs is here to help you. Give them a call if you have any questions. 469-942-9888 469-942-9888 unka number ya phir agfintechs.com is where you need to log on. Acha ji, ye kahani phir badhai do tak pahunchi aur ek middle class family jisme parents expect kar rahe hain aur ek young grown up man aur unki embarrassment, yehi sari kahani thi aur badhai do became another major success built around a subject jo Indian families, jo desi families might find uncomfortable discussing. Jaise humne kaha ki koi taboo hai, koi uncomfortable subject hai, kaun karega? Ayushman Khurana karega aur Ayushman ne apni pehchan bana li aisi aur phir aaya wo unka golden run, yani ki back to back di Ayushman ne kuch behtareen hit filmein aur serious bhi aur saath hi saath कुछ डिफरेंट भी, जैसे कि आर्टिकल 15 उन्होंने स्टेप किया एक ज़्यादा सीरियस स्पेस में, एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया जो कि कन्फ्रंट कर रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, सोशल इनइक्वालिटी को. और दिस वाज नॉट अ रोमांटिक मूवी, नॉट अ कॉमेडी मूवी, इट वाज अ वेरी वेरी सीरियस मूवी. और अपनी वर्सिटैलिटी दिखाई उन्होंने. उसके बाद आई ड्रीम गर्ल, जिसमें वो सीरियस से ही एक लड़की बन गए और फ़ोन के ऊपर जब वो जिस तरह बात कर रहे थे. और अभी मैंने आपके लिए ड्रीम गर्ल का एक गाना थोड़ी देर पहले प्ले किया था, बट दिस इज अनदर वन दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. ड्रीम गर्ल में उन्होंने दिखाया, यू नो, अपनी एबिलिटी टू कन्विंसिंगली इमिटेट अ फीमेल वॉइस एंड व्हाट एन अनयूजुअल एंड ब्यूटीफुल जॉब ही डिड. और फिर आई बाला, जिसमें उन्होंने प्रीमेच्योर बॉल्डनेस के सब्जेक्ट को टच किया. सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन सारे ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
2: कितनी लंबी लिस्ट है?
1: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
2: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
3: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide। विजिट SFLWorldwide.com।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
8: इट्स द टाइम टू क्रैक आउट, इट्स द टाइम टू कैच
2: अप, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम। इंट्रोड्यूसिंग फ्लेम आवर एट तंदूरी फ्लेम, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
9: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 consecutive years, 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
10: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

जी हाँ, सुन रहे थे आप फिल्म बाला से ये गाना, एक से बढ़कर एक डिफरेंट टॉपिक्स की फिल्में, और रिस्क लेना आयुष

जी हाँ, सुन रहे थे आप फिल्म बाला से ये गाना, एक से बढ़कर एक डिफरेंट टॉपिक्स की फिल्में। और रिस्क लेना आयुष्मान ने कभी भी ख़त्म नहीं किया, चाहे फिर वो गुलाबो सिताबो हो जो कि बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो पाई। अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने इस फिल्म को किया। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, यानी कि शुभ मंगल सावधान का एक डिफरेंट वर्जन आया। उसके बाद चंडीगढ़ करे आशिकी, एक एब्सोल्युटली डिफरेंट कहानी के साथ वो वापस आए। और फिर आई एक्शन हीरो जो कि 2022 में आई। मैंने एक्शन हीरो देखी थी, नेटफ्लिक्स पे थी, मुझे बड़ा मजा आया एक्शन हीरो देख के। आई थॉट ही वाज सो फनी एंड सच अ चार्मिंग पर्सनालिटी आयुष्मान डिपिक्टेड इन द एक्शन हीरो। सो जरूर देखिए। और फिर एक्शन हीरो के बाद ड्रीम गर्ल 2 उनकी एक और फिल्म, और उसके बाद आई थाम्मा और पति पत्नी और वो दो। तो ये हैं जी अब तक की रिलीज हुई भी आयुष्मान की फिल्में। लेकिन मेरे पास फिल्में तो उनकी खत्म हो गई तस्करा, एक और अभी नई फिल्म आ रही है जो कि उन्होंने सूरज बिरजाटिया के साथ किए, उसकी कहानी भी आपको बताऊंगी। लेकिन गाने अभी आयुष्मान के मेरे पास 3-4 बाकी हैं। लेट अस कीप लिसनिंग टू दोज ब्यूटिफुल नंबर्स।

और अगर आपका कोई स्पेशल डे आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, कोई वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या फिर एनी अदर स्पेशल सेलिब्रेशन, देन डेफिनेटली आपका दिल है कि आप उसे अनफॉरगेटेबल बनाएं. यू मेक सम ब्यूटिफुल मेमोरीज विदाउट द स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद थ्रोइंग अ बिग पार्टी. तो आप एंजॉय कीजिए एंड लेट वनेसा इवेंट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर फॉर यू. फ्रॉम परफेक्ट वेन्यू एंड स्टनिंग डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी और एक्सक्लूसिव केटरिंग बाय बसेरा ग्रैंड. तो आप जो है वो इवेंट को अपने सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें और वनेसा इवेंट्स को करने दें. ये सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल वो खुद ही रख लेंगे ताकि आप बनाएं बेहतरीन मेमोरीज. आपने कॉल करना है जी हरी बसेरा साहब को ऑफ वनेसा इवेंट्स. दैट नंबर इज 4694428770. 4694428770 इज द नंबर. मेक वनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर. पहली डिटेल से लेकर फाइनल मेमोरी तक वनेसा इवेंट्स विल स्टे विद यू.

कोई सोचे कि आयुष्मान खुराना का सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट उन्हें सक्सेस मिल गई. इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु एंटर्ड बॉलीवुड एंड इमीडिएटली बिकेम अ सुपरस्टार. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ समवन हु लर्न्ड हाउ टू कम्युनिकेट विद अस, देन हाउ टू परफॉर्म थ्रू थिएटर, देन हाउ टू लर्न टू एंटरटेन अस, और फिर फाइनली उन्होंने सीखा कि ऑडियंसिस को ऐसे सब्जेक्ट्स दे के अनकंफर्टेबल कर देते हैं वो, जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो करते हैं. फर्स्ट वी गेट अनकंफर्टेबल, देन वी लाफ विद हिम, देन वी फील फॉर हिम, एंड देन वो खुलता है हमारी दिमाग की वो खिड़की जिससे हम सोचना शुरू करते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में. ऐसी फिल्मों से बनते हैं ऐसे टॉपिक्स, और वो है जी आयुष्मान का खासा. आज हमने किया बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आयुष्मान पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स पे. अभी दो तीन गाने मेरे पास और हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक नई फिल्म जो उनकी आने वाली है और इस बार दिखने वाली है वो हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में. लेट्स वेट.

ये प्रेम मोल लिया, ये आ रही है जी नई फिल्म। अगर आपको याद हो पिछले कुछ अरसे में हमने सुन रहे थे कि सलमान खान सूरज मुजाटिया के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं, शायद उसका नाम रखना जाएगा प्रेम की शादी। लेकिन सलमान खान तो नहीं, लेकिन अब जो है वो आयुष्मान खुराना ने सूरज मुजाटिया के बैंड को ज्वाइन कर लिया है और फिल्म आने वाली है उनके साथ शर्वरी हमें नजर आएंगी। द फिल्म विल बी रिलीज्ड ऑन 27th of November 2026, यानी कि बस दो महीने बाद। आज है 29th September, तो बस दो ही महीने पीछे रह गए हैं। और अभी ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इस फिल्म का, प्रेम मोल, ये प्रेम मोल लिया, ये है जी मूवी का नाम। श्रेया घोषाल और देखिए मैं कौन सी, श्रेया घोषाल और साथ हैं उनके आवाज मिला रहे हैं निहाल, जी हाँ निहाल तोड़ो, इनकी आवाजों में हिमेश रेशमिया ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है। बड़ी ही नॉस्टैल्जिक सी और वही वाली सूरज मुजाटिया वाली फीलिंग है इस गाने की।

104.9 FM Fun Asia Radio पे आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण बॉलीवुड स्पॉटलाइट. ट्यूजडेज की स्पेशलिटी होती है हमारी और आज की स्पॉटलाइट हमने डाली आयुष्मान खुराना पे. और अब सारी बात और सिलसिला खत्म करने के बाद आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे. दिस इज फ्रॉम बरिस्टा हाउस जो कि फ्रिस्को में अब आपके लिए खुल गए हैं. दे वर वेरी पॉपुलर इन डेंटन, नाउ दे आर ओपन इन फ्रिस्को. ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. यहाँ आपको मिलेगा ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स और डिजर्ट्स तो पूछिए ही मत, लाजवाब बेहतरीन डिजर्ट्स यहाँ पे आपके लिए मौजूद है. यानी कि मीठे में क्या है, जाके चेक कीजिए बरिस्टा हाउस और अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए. लोकेशन नोट कर लीजिए, दैट इज 6377 कस्टर रोड फ्रिस्को. तो अब आपके लिए लाई हूँ ये $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली. अगर आप जीतेंगे तो आप वहां जाइएगा और आपको $20 ऑफ मिलेंगे आपके डाइन इन पे और आपको एक लकी विनर में सेलेक्ट करूंगी. अच्छा मुझे बताइए कि आयुष्मान खुराना को हमने सारी बातें की, मैंने बहुत सारे गाने आपके लिए प्ले किए, अपने करियर का पहला सिंगिंग अवार्ड फिल्म फेयर में किस गाने के लिए मिला था? बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड आयुष्मान खुराना ने फिल्म फेयर के लिए पहला कौन से गाने के लिए जीता है? 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: जी हाँ, फोन लाइंस अभी भी बंद हो रही हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है खत्म. आयुष्मान खुराना को मिला अपना पहला प्लेबैक सिंगर का अवार्ड फॉर द मूवी विकी डोनर. गाना था जी बिल्कुल सबसे पहला गाना मैंने इस सिलसिले में आपके लिए चलाया था, पानी दा रंग देखकर, और उसके लिए जीता था उन्होंने, और उसी फिल्म के लिए यानी कि विकी डोनर के लिए ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी, क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी. आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सिद्धार्थ, स्वप्निल, यास्मीन जी, प्रवीण, सागर, एंड अभी भी फोन लाइंस हमारी बज हो रही हैं, बट एज आई सेड कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. और जिस सीक्वेंस में आप मुझे कॉल करते हैं, एक नंबर आपको असाइन होता है और फिर वो मैथ के फॉर्मूले में जाके विनर्स निकलते हैं. आपकी लक आपकी विन का फैसला करती है. मेरे लिए आप सब विनर हैं बिकॉज आपने टाइम निकाला, मुझे कॉल किया, अपना जवाब दिया. थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग. लेकिन हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो हैं जी कॉलर नंबर 5. एक्चुअली दिस इज सागर कोटक. सागर, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दिस इज आपके लिए आया था जी, मैं बताती चलूँ आपको, ब्रिस्टा हाउस की तरफ से, जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड हैं. $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड अवेल दिस गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज ऑलवेज रियली रियली थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन.
1: दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है.

जी हाँ, और बस इस गाने के साथ हम कर रहे हैं इस सेगमेंट का, यानी कि बॉलीवुड स्पॉटलाइट का इख्तिताम। अगला आधा आधा घंटा टू 40 मिनट्स में आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ मिक्स्ड म्यूजिक। इसी के साथ होगा आपके लिए वेदर अपडेट, करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, बहुत कुछ है आपके लिए लाइंड अप। अभी 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ, बने रहिए।

जी हाँ, इसी के साथ हो रहा है हमारा बॉलीवुड स्पॉटलाइट के सेगमेंट का इख्तिताम। बता दी चलूँ आपको, ये प्रेम मोलिया मूवी आने वाली है नई आयुष्मान खुराना की, जो कि 27 नवंबर को रिलीज होगी। अभी उसका एक गाना मैंने आपके लिए प्ले किया था, जो कि अभी 4-5 दिन पहले रिलीज हुआ है। आयुष्मान खुराना नजर आएंगे एज सूरज प्रजाटिया एज प्रेम, जबकि शर्वरी नजर आएंगी पूर्वा के रोल में। और सूरज प्रजाटिया और हिमेश रेशमिया ने दोबारा से इसमें वो कहते हैं ना जोड़ी बनाई है अपनी। हिमेश रेशमिया ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमें क्या देखने को मिलेगा इस फिल्म के साथ। तो जी अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाने की तरफ। नॉट आयुष्मान सेगमेंट खत्म हो चुका है। दिस इज अनदर वन, कार्तिक आर्यन।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
13: It's the time to clock out.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
15: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
16: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
17: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
15: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
17: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
18: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
19: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
20: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
19: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
18: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m.
1: this weekend. Let the Flavor Lounge do the cooking.
21: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
22: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM

0: 104.9 FM Fun Asia Radio पे Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. आधा घंटा मेरा और आपका एक साथ अभी बाकी है. 5 बजे तक मैं यहाँ मौजूद हूँ. And it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. Amanji from URA Debt Relief is with us today, जो हमें बताएंगे कि why and how URA can help you. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Amanji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून किरण जी. आपके शो के साथ साथ अपने दोस्तों को गानों के साथ साथ थोड़ा मनी सेविंग का प्लान भी बता दें कि दोस्तों ये महीने का सेकंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन होगा, लेकिन अगले महीने फिर से वही कवायद शुरू हो जाएगी कि आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरेंगे. मैं कल अपने क्रेडिट कार्ड की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसके ऊपर लिखा था कि अगर आप पे मिनिमम करते हैं तो इसको पे करने में 32 साल लगेंगे. आपने क्या कभी अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट पढ़ी है? तो आप को पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरने का मतलब है कि 40% इंटरेस्ट देना और उसको 32 से 45 साल लगते हैं मिनिमम पेमेंट देने में. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधा माफ कर दिया जाए, माफ माफ माफ कर दिया जाए, और जो बाकी बचेगा उस आधे बचे की आसान सी किस्तें बना दी जाए, तो हाउ वाज दैट? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा भी माफ हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर भी जाएगा, और आप डेट फ्री होकर आपका स्कोर भी इंप्रूव कर लेंगे, और आपको घर का लोन रीफाइनेंस या नया घर बाय करना, गाड़ी बाय करना आसान हो जाएगा. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दे दे के परेशान हैं, तो प्लीज स्टॉप पेइंग मिनिमम पेमेंट. आप कॉल कीजिए उरा को आपके क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट के लिए. ये कोई बैंकरप्सी नहीं है, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट बल्कि आपके पर्सनल लोन्स या फिर गाड़ी जो रीपोजेस हो चुकी है या गाड़ी टोटल हो चुकी है उसको भी अगर आप नेगोशिएट करके माफ करवाना चाहते हैं, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं. कॉल मी 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल कीजिएगा. अगले महीने वो गलती मत कीजिए जो इस महीने या पिछले महीने की थी.
0: There you go. That was Mr. Aman from URA Debt Relief for you. Give him a call for all your questions. Thank you, Amanji, for connecting with us. We will talk to you next time.
1: Thank you.
0: Have a good one.

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट और करेंसी अपडेट. सो जी, अकॉर्डिंग टू xrates.com राइट नाउ यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.88 विद रिस्पेक्ट टू 1 US डॉलर. ब्रिटिश पाउंड इस वक्त स्टैंड कर रहा है 0.75 पे. इंडियन रुपी 95.93, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.04 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपाली रुपी इस वक्त ट्रेड कर रहा है जी 153.57, जबकि बांग्लादेशी टका 122.94 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

और इसी के साथ दे रही हूं आपको गोल्ड प्राइस अपडेट जी कि सोने का भाव आज क्या रहा. अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,182.14 जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत है इस वक्त $134.46. कल की नस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $1.49 का इजाफा हुआ जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $46.38 का इजाफा देखने को मिला. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran.

0: 5:11 in the studio clock. This is your evening drive time show only on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Main hoon Jee Banda Bindaas, Marvin Das, and this is your Bindaas show. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. And that is so very true. You know, Uncle KFC wale Baba Ji, he was quite old, but he never gave up on the dream. The dream today is a brand called KFC, globally recognized and operational. Birthdays, anniversaries, koi bhi khushi ka mauka agar aaj aap celebrate kar rahe hain, then I would love to be a part of that joy. Do give me a call at the studio line, 972-235-5555. The studio lines are open for you. Achhe gaane, naye gaane zarur lagaunga, thake tareen nahi lagaunga yaar. Because, you know, when you're done from the day, ab ghar ja rahe ho aap, and koi ghar ja raha hai, koi actually kaam pe ja raha hai, koi actually kisi ki wajah se kahin ja raha hai, but wherever you're going, some good music will give you company. I'm going to make sure of that. Let's get you going here, but उससे पहले कोई है करना चाहता है हमारे से बात कर लेते हैं जल्दी से. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, नहीं तो हमारी बात को नहीं मुश्किल हो जाती है. एंड दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो कॉल करते हैं भाई रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए करें, एंड देन हमारे से बात करें. गुड इवनिंग टू यू फनेजा, हु इज दिस?
1: बड़े भाई कैसे
0: हैं? अच्छा हूँ छोटे भाई, आप कैसे हो?
1: सैयारा पूछू नहीं तो गहरा हुआ पूछू.
0: सैयारा वाला भाई मेरा मोहम्मद, एवरीथिंग गुड विद यू?
1: अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक. ऑल गुड.
0: अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे और खुशियों से नवाजे.
1: आमीन आमीन.
0: लेट मी गेट यू गोइंग ऑन द फर्स्ट ट्रैक फॉर द इवनिंग, एंड देन आई एम गोना कम बैक टू माय मोहम्मद भाई, जिनको सैयारा फिल्म से ही नहीं उसके गानों से भी बेहद प्यार हो चुका है. बट फॉर नाउ इट इज उर्मिला विद संजू बाबा.

0: Texas Star Rehab is the place that I would recommend if you guys are planning to do any surgery, especially if you have a surgery related with your joint, hip ho, ankle ho, knee ho, elbow, shoulders, whatever you're doing. Get yourself the post-surgery rehab with Texas Star Rehab and Performance Center. Uski wajah ye hai ke the guy there who owns and runs this practice, his name is Rushi. He's an excellent physiotherapist, dedicated almost all of his life to that, and also the physiotherapist for MLC cricket here in the US. Sare cricketers ka khyal rakhte hain aur aapka bhi rakhenge, especially if you have parents jo kehte hain yaar mere, I think my knees are having some problem, my back is acting up, meri pith akad jati hai, tak tak bajti hai. तो जब ऐसा कुछ होता है देन डोंट गो फॉर दैट पेन किलर दैट यू फाइंड, गो फॉर अ नेचुरल रेमेडी दैट यू विल फाइंड विद टेक्सास स्टार रिहैब. वेबसाइट इज texasstarrehab.com. टू लोकेशंस टू सर्व यू, इरविंग एंड इन फ्रिस्को. मेक श्योर टू टेल देम मार्विन सेड गुड थिंग्स अबाउट यू. आई बी राइट बैक.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-27.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Ek aur laddu le lo.
4: Thodi aur biryani.
3: Arey America jaake thodi milega.
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेसवर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
6: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
9: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट. वी हैड सो मच फन.
13: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट. Where can we eat now?
12: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
19: कितनी लंबी लिस्ट है?
18: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
19: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
20: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
21: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

कहते हैं और कहते क्या है, आजकल ऐसा सुनने को भी बहुत मिलता है कि आजकल का प्यार जो है ना वो सच नहीं होता यार। ये बहुत जगह इस बारे में परेशानियां हैं कि आजकल का प्यार जो है वो सच नहीं होता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आजकल का नहीं सच होता तो परसों फिर ट्राई कर लेना।

0: देखो जी, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है ना। आजकल का प्यार नकली है, नहीं सच्चा है, तो क्या बात है। हम अगले हफ्ते ट्राई कर लेंगे, उसके अगले हफ्ते ट्राई कर लेंगे, पर कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। बंदा ये बिंदास है जी, नाम अरविंदास है। इट्स 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, और हमारे साथ करना चाहता है कोई बात। गुड इवनिंग टू यू। खिड़कियां बंद कर लो, ब्लूटूथ से मुझे निकाल लो। ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे एरोप्लेन में से कॉल किया है। कौन बोल रहे हैं? हेलो एरोप्लेन के यात्री, कौन बोल रहे हैं आप?
1: Hi, this is Aliza.
0: Hi, Aliza. How are you? It felt like you were in an aeroplane and I could hear all the rumbling and the tumbling and the, you know, the distortions there, but I hope that you're doing wonderfully well. What can I do for you?
1: Hi, would you like to play a song for us, please? It's actually for my son. He would like to listen to the Rasmalai song on Coke Studio.
0: Rasmalai? Is that what you said?
1: No, it's Rasmalai.
0: Rasmalai. All right.
1: Vash with W. Thank you.
0: Rasmalai. What's your son's name?
1: Adam.
0: All right. I am going to line that up for Adam. Thank you very much for that call. It is going to be a song that I'm bringing to you. Uske baad kuch aur khas baatein. This is your Evening Drive Time show, the one and only the Bindaas show. And this part of the show is brought to you by Navneeta Khemka, jo ki ab ban chuki hai ji Keller William ke saath realtor. She's now a realtor, getting you your homes in DFW and beyond. If you're looking for a home, aap chahte hain ki acche se ilake mein aapka ek pyara sa ghar ho, to wo kahani aapki complete karwayengi Navneeta. Give her a call. She'll get you all the right listings that you are looking out for. Unka number aap mujhse le lijiye. Number to call is 347-449-4242. That's 347-449-4242. This is the Bindaas show, only on Fun Asia. Let's take you to the agla gana, because gaano ke bina ye safar adhura hai bhai jaan.
2: Mat jodiye mujhse rishta, mere bare mein tum kuch nahi jante.
3: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं, मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है।

0: अफसाना बनाया, अफसाना अफसाना बनाया आपने। कल भी मैंने कहा था कि जो हिमेश रेशमिया साहब का जोश उसमें था ना, आशिक बनाया, उसका मजा अलग था। ये ठीक है, कोशिश इन्होंने करी है कि वो वाली फील आए, बट नहीं साहब, मेरे हिसाब से ये फील फेल हो गई। आपको क्या लगता है इस बारे में? पब्लिक का जो रिव्यू है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, दैट इज़ वॉट मैटर्स। आपको और भी बहुत सारी बातें आज बतानी है, और कुछ गिव अवेज भी हैं मेरे पास, जैसे कि मिराज लाउंज, ये देते हैं जी आपको $20 ऑफ देयर $30 बिल, एंड दे मेक श्योर दैट यू गेट अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन यू गेट देयर। तो वो जीतना कैसे है बताऊंगा आफ्टर द फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। कोई है हमारे साथ? लेट्स टॉक टू देम। गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
1: या जेम्स।
0: जेम्स, हाउ आर यू जेम्स?
1: आई एम ओके, हाउ आर यू?
0: आई एम बॉन्ड 007।
1: कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर किसी दिन।
0: मैं बॉन्ड वो नहीं, फेवी बॉन्ड, मेरा कमर्शियल सीमेंट का काम करता हूँ। अच्छा जेम्स भैया, क्या कर सकता हूँ आपके लिए भाई?
1: अरे यो, आप वो बोल रहे हो ना, तो गाना चला दो ना।
0: कौन सा? आशिक बनाया। चलो अब आपने कहा है
1: तो पता तो चले ना कि क्या डिफरेंस है।
0: बिल्कुल यार, आपने बात पते की करी है। चलो आपके पते की बात को पूरा एड्रेस देते हैं और भेजते हैं उसको सही पते पे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ये बोल दूं भाड़ में जाओ। क्या तो देते हैं एड्रेस, कोई देता नहीं, पता नहीं जाना कहाँ है। थैंक यू बड़े भैया। सो दिस वाज द ओरिजिनल।

That was the old Himesh Sahab with that track, and I wanted to get you the flavor, na? Jaise hamare bhai ne kaha, James Bond, Bond, Bond, Bond. Chalo, Bond to bade acche hote hain, bas wo jo jod banta hai na, Favicol ka, aur ek jod banta hai shadi ka. Shadi ka jod jo hai, wo wedding aur welding dono milte julte shabd hai. अब इसमें क्या मतलब है वो छोड़ो, आपको खुद को पता, मैं हर चीज़ बताऊंगा तो आपका क्या काम है, कुछ आप लोग भी तो अपने बारे में कुछ बातें करोगे ना यार, मैं थोड़ी सारी बातें करूंगा. चलो, कुछ रिश्ते मौत के बाद नहीं ज़िंदगी में चाहिए होते हैं दोस्तों, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को पास रखा करो यार, और जब जिसकी मदद कर सको, किसी की हेल्प कर सको तो ज़रूर करा करो. वाशा मल्ले गाना रिक्वेस्ट किया था जी हमारे एडम भाई ने, एडम द जूनियर एडम, दिस वन इज़ फॉर यू एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा who is our drive time sponsor and they also make sure that you guys are very well taken care of in case aapka kabhi accident ho jaye, aap kahin slip ya fall kar jaye kisi jagah pe, these guys fight for you from with the insurance companies making sure ki aapka jo kharcha hua hai chahe wo gaadi ke repair mein hai, aapka job loss hua hai and anything to do with the loss during that or after that accident period if you were not at fault, they will fight, get you the max amount of money. कहाँ मिलेंगे ये अटर्नी, सिर्फ वेबसाइट पे जाइए attorneyomar.com, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग राइट अवे, जस्ट ये नाम जो है वो याद रखना है, मौके पे इन्हीं तक पहुंचिएगा. फॉर नाउ इट इज़ वाश मल्ले.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
2: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayein aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here. Everything is better.
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आस

0: traditionals or Texan favorites. HEB. Here, everything is better.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: वी नीड टू टॉक।
3: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
3: Oh no.
2: It's the distance.
3: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
4: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
2: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
5: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
6: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Welcome back to your evening drive time show. It is Ikshka Shava, 5:47 in the studio clock, 5:47. Today is a Tuesday evening. That means Mangalwar. And Mangalwar, you know, the biggest thing is that the mind is not doing the mind of the wife. Because the mind is not doing the mind of the wife. There is a shanka of the wife. We don't say this. Siyane Buzurg said, I'm telling you the story. That's all I do. One thing I don't know. I don't know who is saying this. कि चलो वो बाद में बताता हूँ आपको, पहले ये बताता हूँ कि टेक्सास प्राइमरी केयर आ चुका है जी आपके लिए राइट हियर इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को विद 13 इयर्स इन बिजनेस एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग यू लोनॉक्सी मेडिकल व्हिच इज देयर सेकंड ब्रांड न्यू लोकेशन राइट इन द हार्ट ऑफ मैकिनी. दिस वन इज ऑन काइजर रोड एंड मेन स्ट्रीट एंड द अदर वन इज ऑन मेन स्ट्रीट एंड 423 व्हिच इज कॉल्ड टेक्सास प्राइमरी केयर. नाउ आपको यहाँ पे मिलेगा क्या जी, सारी सहूलतें जो एक PCP आपको प्रोवाइड करते हैं. And the doctor there is Dr. Mandeep Acharya, who's the founder of Lonoxy Medical. And he's a great doctor, somebody whom I trust to be my PCP, and I'm recommending them to you, which is for more reasons. Reasons kya hai? Ki inki facility mein in-house lab testing hai, x-rays hai, CT scans hai, cardiac diagnostics hai, and Himalayan Med Spa services. They are available in-house at both of their locations. And all under one roof. Saton din khule hain. That's another benefit that you guys get, that they're open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can also do a walk-in anytime, and you do not really need an appointment if you want to see them. So, no more waiting. Go there, get your things done, and see the best PCP that I recommend, Dr. Mandeep Acharya. Coming back to the giveaway time that I told you, ki bhai ek segment hai aapke liye jisme milega ji from this wonderful hookah lounge, jo ki aapke liye in the heart of McKinney hai. Unka naam hai Miraj Hookah Lounge, and they are giving you premium hookahs, delicious bites, cocktail, live music, and DJ nights. Enjoy happy hour Monday through Thursday. एंड आपको 11 बजे से 6 बजे तक ये हैप्पी आवर मिलेगा. लेडीज नाइट, डीजे नाइट, सब कुछ करते हैं. एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो देयर फेसबुक पेज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. नाउ आज क्या मिलेगा, यू विल गेट $20 ऑफ अ मिनिमम $50 डाइन इन बिल. जी हाँ, $50 खर्चिए, $20 ऑफ पाइए. एंड आई एम गोना सेलेक्ट टू विनर्स फॉर दैट. आई एम गोना आस्क यू एक सवाल, और जो देगा मुझे इसका बढ़िया सा जवाब या सही जवाब आज, उसको मिलेगा जी ये. पहली बात ये कि ये मैकिनी में लोकेटेड है, तो मेक श्योर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो यू कॉल मी एंड यू आर एबल टू गो टू दिस मिराज हुक्का लाउंज इन मैकिनी. अच्छा जी, सवाल क्या पूछना है कि अगर ये वाला पूछते हैं, चलो टेल मी द नेम ऑफ अ फ्रूट. है जी, टेल मी द नेम ऑफ अ फ्रूट दैट स्क्रीम्स अ लॉट. बताइए एक ऐसे फल का नाम जो चीखता बहुत है. सोचो और स्टूडियो के नंबर पे कॉल करो. जो देगा सही जवाब, दो लकी विनर आज ले जाए मुझसे $20 ऑफ योर $50 बिल. एब्सोल्युटली फ्री, मतलब सिर्फ जवाब देने से ही यार, कमाल है. गुड इवनिंग फनेजर.
1: हाँ जी, दिस इज मिहिर.
0: हाँ जी मिहिर भाई, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर, कार ड्राइव कर रहे हैं.
0: अच्छा, बड़ी बढ़िया बात है सर. गाड़ी ड्राइव कीजिए, बट डोंट लेट एनीबॉडी ड्राइव यू मैड. रेस्ट इज फाइन.
1: नो, आई एम ट्राइंग नॉट टू.
0: मैं सर, व्हिच इज दिस फ्रूट दैट स्क्रीम्स अ लॉट मैन?
1: चीकू.
0: चीकू,
1: हां
0: चीकू कहते हैं मिहिर भाई. चीकू
1: चीकू
0: चीकू चीकू कहते हैं मिहिर भाई. होल्ड करेंगे आप मेरे लिए. लेट्स सी इफ यू हैव द राइट आंसर और नॉट. सेकंड भैया, कौन सा भैया फ्रूट है दैट स्क्रीम्स अ लॉट? हु इज एंड आपका नाम?
2: हेलो, मेरा नाम हिमांशु पटेल, ड्रैगन फ्रूट.
0: हिमांशु पटेल कहते हैं ड्रैगन फ्रूट. थैंक यू हिमांशु भाई फॉर योर कॉल. देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं. मेरा एक जवाब और मैं ढूंढ रहा हूँ आंसर. हूएवर गिव्स मी दैट टेक्स दिस. गुड इवनिंग फनेजिया, रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप. कौन बोल रहे?
3: हेलो
0: हेलो,
3: हाय. सो माय आंसर, हाय माय नेम.
0: यस, योर नेम इज Riz
3: Meat.
0: Okay, Riz Meat.
3: Yes, and my answer, Dragon Fruit.
0: Dragon Fruit is saying Riz Meat. Thank you, Riz Meat, for that call. And the real answer is actually चीकू. यार उन्होंने बताया तो है कि चीकू, चीख चीख के कह रहा है मैं चीकू हूँ. चलो जब तक आप इस गिवअवे को, मैं डिटेल्स लेता हूँ किससे, मिहिर भाई से जिन्होंने जीता है. कॉन्ग्रेचुलेशन मिहिर, इट इज़ इंडीड चीकू जो मैं आंसर ढूंढ रहा था. इन द मीन टाइम आप लोग ये सोचिए कि ये एक बंदा, चलो ये सोच के बताइए बड़े ध्यान से, जो बंदा गाड़ी में पैदा हुआ हो और मरा वो गाड़ी के बाहर हो उसको क्या बोलेंगे? जो बंदा गाड़ी के अंदर पैदा हुआ हो और उसकी डेथ गाड़ी के बाहर हुई हो उसको क्या बोलेंगे? इसके साथ कोई गिव अवे नहीं है। चलो एक और मौका, एक और विनर चूज करूंगा। अगर मेरे को दिया सही जवाब, क्या मिलेगा? $20 ऑफ योर $50 बिल एट मिराज हुका लाउंज। एक आदमी जो गाड़ी में पैदा हुआ और गाड़ी के बाहर उसकी डेथ हो गई, उसको क्या बोलेंगे?

0: और इस सवाल को ना थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स होके सोचना कि वो साउंड बिल्कुल वैसा ही करेगा, आवाज वैसी आएगी जैसा मैंने बताया कि एक आदमी गाड़ी में पैदा होता है और गाड़ी के बाहर मर जाता है, अगर इसको हम एक शब्द में ढालें तो कैसा ढलेगा, देखता हूँ कौन है मेरे साथ। गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग, हुज दिस?
1: माय नेम इज हितांशी।
0: हितांशी, हाउ आर यू?
1: गुड
0: Hitachi, you know, I have a TV in my house. It is a brand called Hitachi. That's your brother.
1: Oh, yay!
0: Yeah, Hitachi, what can I do for you today?
1: I love TV.
0: Yeah, I love TV too. I just don't get to watch it too much. But tell me, Hitachi, do you know what this person is going to be called? Jo paida gaadi mein hua aur bahar jaake outside jaake mar gaya.
1: This person is called carbon dioxide.
0: What? ये तो बड़ी तेज निकली यार हिताची, मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ हिताची टेलीविजन, दैट योर ब्रदर वाज डूइंग सो वेल इन बिजनेस दैट यू सेड यू नो व्हाट आई एम गोना बी स्मार्टर टू, या बट हिताची आई डोंट थिंक यू कैन गो टू हुक्का लाउंज, सो आई एम गोना हैव टू पास इट ऑन टू समबडी एल्स। हाउ ओल्ड आर यू हिताची?
1: आई
0: एम 12। देयर वी गो, दैट्स व्हाई हुक्का इज नॉट फॉर यू। But I appreciate you calling, Hitanshi. Let me see if the next person gets it. Good evening, Fanesha. Who's this?
2: Hello, my name is Monica.
0: Hi, Monica. How are you?
2: I'm good. आप कैसे हो मार्विन?
0: मैं जैसे आप गुड हो, मैं मिश्री हूँ, मुझे मिश्री भी कह सकते हो आप।
3: How are you?
2: Okay. मैं आती हूँ आपके रेस्टोरेंट, मुझे अच्छा लगता है, आप भाभी बोलते हो।
0: बहुत शुक्रिया जी, हम तो किसी को भी मतलब अगर नहीं जानते हो तो आजकल शादी हो गई भाभी बोल के सेफ लिंक निकलता है। अच्छा भाभी, ये बताइए कि इसको क्या बोलेंगे बंदे को?
2: तो इस बंदे का नाम हम रख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड।
0: यस मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। में किनी जाएंगी?
2: Yes, I stay in Mekini.
0: Oh, lovely. Then you will party at the Mirage Lounge. I'll take your details off the air. Yes, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। समझे यार, कार्बन डाइऑक्साइड। आदमी गाड़ी में पैदा हुआ, बाहर जाके मर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। होता है यार, होता है जिंदगी में सेनोरिटा, दुनिया में छोटी छोटी बात होती रहती है ना, उनमें से एक ये थी।
4: स्टाइल क्वीन कैटरीना कैफ लगेगी। टच मी, टच मी, टच मी।

0: टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टुमक टु है तो गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके पास घर है और आपके पास मॉर्गेज इंश्योरेंस नहीं है, वो फिर से गड़बड़ है। आपके पास बिजनेसेस हैं, आपने उसको नहीं प्रोटेक्ट किया हुआ, तो वो भी गड़बड़ है। क्या आपको ये मालूम है कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज भी हों और उस प्रॉपर्टी बाई चांस कोई चल रहा हो और वो गिर जाए तो भी आप लाइबल हो सकते हैं? दीज आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू नो इन द इंश्योरेंस वर्ल्ड, बट वी जस्ट डोंट नो अबाउट दैम बिकॉज हमारा कभी पाला ही नहीं पड़ा जी उससे। बट अगर आपका पाला पड़े तो आपको क्या चीज़ें देखनी होती हैं? पहले तो ये देखना होता है कि वॉट आर योर कवरेजेस गोना कवर यू फ्रॉम, किस चीज़ की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, किस किस चीज़ की नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द एजेंट्स इन द मार्केट, जब आप बोलो ना यार पैसे कम कर लो, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ये होता है पैसे कम कर लो, पैसे कम करोगे तो आपकी कवरेजेस कम हो जाती हैं। बट इफ़ यू हैव अ स्मार्ट एजेंट, दे आर गोना प्ले अराउंड विद द पॉलिसी इन अ मैनर कि आपको कवरेजेस भी एक्सीलेंट मिले वाइल यू गेटिंग द बेस्ट प्राइस इन द मार्केट। एंड फॉर दैट वी हैव आर इंश्योरेंस पार्टनर जिनका नाम है हुमैरा जुमानी विद सनाडा इंक, SENADAINC.com is the website, sanadainc.com, and you can get all the information there as well. But she joins us to give us an update from the world of insurance. Let's check out what it is today. Good evening, Humaira ji. What is today's update for our listeners?
1: Good evening. Today's update is regarding the annual enrollment period that is starting for Medicare Advantage and prescription drug plan. Agar koi bhi PDP plan mein ya Medicare Advantage plan mein enrolled hai, this is the right time when they can upgrade and change their plan. It is starting on October 15th and ending on December 7th. The annual enrollment is starting on November 1st for 2027. There are a lot of changes coming up for next year. So this is the time when all the people, they can contact their agent or they can contact me or my team and we can assist them. The number to contact is 972-863-7772. 972-863-7772. Or they can visit my website, Sanada, SENADAINC.com.
0: Perfect. That is Humaira Jumani with Sanada Inc. There was a little disturbance, but what I can tell you is if you're looking for any insurance, especially when the open enrollment comes to get the plans that can save you a ton of money, I think you should definitely give them a call, 972-863-7772. Right after this track, get ready because garba. RIG 2 tickets from SFL Worldwide.

0: अरे बावली क्या कर रही रहा तू इस टाइम गाड़ी में जा रही है गरबा खेलना। वैसे तो हरियाणवी में बोल रहा हूँ पर हरियाणवी अगर गरबा खेलना चाहे तो आप थोड़ी रोकोगे, खिलाओगे ना। तो मैंने एक्चुअली जिंदगी में आज तक गरबा कभी नहीं मैं गया, नेवर इन माई लाइफ हैव आई एवर बीन टू गरबा। आप लोगों में से किसी ने बुलाया नहीं। पर्सनली स्टूडियो का नंबर आपके पास है 9722355555, फिर बोल रहा हूँ बुला लो यार कोई कभी गरबे पे। गरबे की दो टिकटें आपकी तरफ आने वाली हैं, वन पर विनर एंड दैट इज गोना बी फ्रॉम SFL वर्ल्ड वाइड। पहले तो आपको हमेशा बताता हूँ कि SFL वर्ल्ड वाइड द नेम इटसेल्फ टेल्स यू शिप फॉर लेस वर्ल्ड वाइड, दैट्स व्हाट दे स्टैंड फॉर। और अब जो फेस्टिव सीजन है इसमें बहाना नहीं चलने देंगे हम आपका कि बड़ी दूर रहते थे जी हम गिफ्ट नहीं भेज पाए। आउटफिट हो, मिठाई हो, नमकीन हो, ऑल ऑफ योर फेवरेट गुडीज कहीं से भी कहां तक पहुंचा सकते हो आप, यानी कि अपने आप तक भी मंगवा सकते हो। इंडिया से मंगवाना है खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मम्मा के लिए, दैट फ्लेवर दैट यू आर क्रेविंग दैट इज अवेलेबल विद SFL। आपको किसी और को गिफ्ट भेजना है, यहां से इंडिया भेजना है, यहां से वकाका वाका किसी भी कंट्री भेजना है फॉर दैट मैटर, यू गेट ऑल ऑफ दोज सॉल्यूशंस। अब आप कहोगे यार कि क्या वो पूजा के मंदिर, झूले, फर्नीचर ये भी ला सकते हैं? एब्सोल्युटली ला सकते हैं। पूरा का पूरा घर आपका, मतलब ये मत सोचना कि घर को नीचे से उखाड़ेंगे और फिर मूव कर देंगे, घर का सारा सामान इफ़ यू आर रीलोकेटिंग दे विल डू दैट फॉर यू। गाड़ियां तक आपके लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। साथ साथ इफ़ यू हैव अ बिजनेस यू आर डूइंग सो मच ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं बता रहा हूँ आपको कि SFL के साथ अगर आप डील बनाएंगे आप जितना पैसा आज ट्रांसपोर्ट पे खर्च रहे हैं उससे कम ही खर्चेंगे, ये मेरा वादा है। इवन एट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ अ सिंपल कोरियर डॉक्यूमेंट शिपिंग, खुद टेस्ट करके देख लो ना यार, USPS अदर कंपनीज यू विल प्रॉब्ली सेव 20-30% ईजीली। 1-800-691-2335 इज देयर फोन नंबर, द वेबसाइट इज SFLWorldwide.com। नाउ इस वीकेंड पे जी आपके लिए अक्टूबर की 3 तारीख को DFW गुजराती समाज लेके आए हैं नवरात्रि गरबा 2026 एंड दिस इज फीचरिंग सनी जाधव। कहाँ पे है ये? फ्रिस्को फ्लायर्स में। दोबारा से बता रहा हूँ, फ्रिस्को फ्लायर्स दिस अक्टूबर 3rd सैटरडे एंड दिस इज गोना बी इन द फ्रिस्को फ्लायर इवेंट वेन्यू, जहां पे आपको मिलेगा जी ये गरबा ब्रॉट यू बाय गुजराती समाज सनी जाधव के साथ। आपको मुझे बताना है कि अगर बीवी को हम बोलते हैं जो मैरिड वुमन होती है उसको सुहागन बोला जाता है, राइट? अपने क्रिएटिव दिमाग को खोलो और मुझे बताओ कि अगर पत्नी को सुहागन बोला जाता है तो पति को क्या बोला जाएगा? थोड़ा क्रिएटिव आंसर खोलो, खोलो दरवाजे पर देखकर किनारे खिड़की खोलो अपने दिमाग की और मुझे जवाब दो, ठीक है? 9722355555 दो लकी विनर जो देंगे बहुत क्रिएटिव बढ़िया जवाब उसको मिलेगा ये गरबा का टिकट जो इस सैटरडे को है 3 अक्टूबर को DFW गुजराती समाज नवरात्रि गरबा सनी जाधव। आपके पास है मौका अब जवाब देने का। अगर लड़की मैरिड हो उसको बोलते हैं सुहागन, अगर आदमी मैरिड हो तो उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा रिलेट करो ना, समझ रहे हो?
1: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप मेरी, अलग है वाइब, अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप मेरी, अलग है।
0: ये तो गाना मेरे पे बना हुआ, चलो कोई बात नहीं, पहले देखते हैं कौन है हमारे साथ। गुड इवनिंग फनेशिया, फटाफट से आपका नाम बताइए।
2: शाहिना।
0: शाहिना जी कैसी हैं? गरबा जाती हैं?
2: गरबा नहीं, मेरी बेटी जाती है।
0: बेटी जाएगी तभी दूं के आप बोलोगे जीतने के बाद? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती ना, आप किसी और को दे दो, ऐसा ना करो।
2: मैं भी चली जाऊंगी।
0: अच्छा अच्छा, मैंने कहा आजकल आजकल कई बार लोग बड़े दानवीर हो जाते हैं जब जा नहीं सकते, उन्हें आप किसी और को दे दीजिए।
2: नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले बोला था।
0: अच्छा शाहिना जी, अब बताइए, अब बताइए आपके हिसाब से अगर सुहागन है तो आदमी को क्या बोलना चाहिए?
2: सुहाग।
0: सुहाग
2: जी, हमारी उर्दू में सुहाग बोलते हैं।
0: तो आप लोग गन क्यों लाती हो बीच में?
2: गन लगाते
0: हैं। ये लेडीज बड़ी खराब है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये लेडीज बहुत खराब है। देखो गन इन्होंने लगाया, हमारा नाम सुहाग होता था, इन्होंने लगाया सुहाग गन। हाँ जी गुड इवनिंग फनेशिया।
3: हेलो
0: हेलो, हाँ जी रमाकांत रामनाथन सर, अपना नाम तो बताइए, इतना क्यों घबरा रहे हो? कौन बनेगा करोड़पति में थोड़ी कॉल लग गया आपका। स्वप्निल कैसे हो?
3: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं थोड़ा बचपन में गिर गया था, उसकी चोट कभी कभी रेडियो पे महसूस होती है आप लोगों को। ये बताओ स्वप्निल, ये बताइए कि ये सुहागन, पहले तो आपने देखा कितनी अनफेयर बात की इन्होंने कि पाकिस्तान में मेल आदमी को मैरिड को सुहाग कहते हैं, ये लेडीज ने गन साथ में जरूर लानी थी। खैर आप बताओ कि आप आपके हिसाब से सुहागन का जो काउंटर पार्ट है उसको क्या बोलना चाहिए?
3: सौभाग्यशाली।
0: स्वभाग्यशाली। अच्छा, मतलब ये तो ऐसा हो गया, सौ भगा के ले गया साली, सौभाग्यशाली। कोई क्या नाम बोला था आपने अपना बड़े भाई? स्वप्निल।
3: स्वप्निल,
0: स्वप्निल, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ यार, थोड़ा दिमाग कहीं और चलाओ। गुड इवनिंग फनेशिया, सुहागन का मेल को क्या बोलेंगे?
4: सुहाग।
0: ओ यार, ये तो लेटरल में बोलेंगे ना यार, कुछ डिफरेंट सोचो ना यार। सुहाग वो लेके आई, सुहाग गन लेके आई है, कोई सुहाग बारूद बोलो, हैं, कोई सुहाग तीर बोलो, थोड़ा डिफरेंट चलो यार मेरे बड़े भैया। देखता हूँ और कौन है मेरे साथ जो देना चाहते हैं इस बात का जवाब कि सुहागन है तो बंदे को क्या बोलना चाहिए। गुड इवनिंग फनेश, रेडियो का वॉल्यूम कम करो, अपना बढ़ाओ। कौन बोल रहा है?
5: हेलो, या दिस इज पंकज।
0: पंकज, दिस इज मार्विन। बताओ फिर क्या बोलेंगे सुहागन के मेल को?
5: चिरंजीवी।
0: चिरंजीवी, क्या बात है पंकज भैया, चिरंजीवी ये निकला। थोड़ा डब्बा पिटारी खोल लगी थी आपने, अच्छा लगा मुझे, होल करना आप मेल जरा। एक और कॉल लूंगा फटाफट से। गुड इवनिंग फनेशिया, अपना नाम बताओ जल्दी करो।
6: गुड इवनिंग मार्विन जी, मेरा नाम प्रशांत है।
0: प्रशांत, फटाफट बताओ आप सुहागन के मेल को क्या बोलेंगे?
6: अभी अगर वो लड़की सुहागन है
0: जल्दी जल्दी,
6: तो लड़का सुहाग गोली होना चाहिए, ताकि गन को चलाने वाला गोली भी तो होना चाहिए।
0: सुहाग गोली, ब्रेक के बाद आया होली होली।
7: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
8: Every home has a story. Let's create yours together.
9: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
10: to pehle check kar lo us pe deal hai ya nahi.
11: Deal? Kahan?
10: Simple, Paasya pe. Introducing Paasya. Discover exciting deals and offers at restaurants near you right now. Open Paasya, see what's around you, find a deal and grab it before it's gone.
11: Download Paasya, that's Paasya. Today, because deals dur nahi, paas hai.
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
14: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
13: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
15: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
16: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
15: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
16: To solution?
7: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
17: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
18: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
17: Miss Clicks?
19: 100 logon ne click bhi kiya.
17: Customers kitne aaye?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

0: हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
1: किसे? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हारने के बाद भी अपनी हार ना माने उसे घर की मालकिन कहते हैं।

0: बंदा है बिंदास है जी, नाम अरविंदास है। जबरदस्त जबरदस्त जवाब दिए लोगों ने मुझे कि सुहागन के, किसी ने बोला सुहाग बोलेंगे। वैसे ये गलत बात है। देखो लेडीज, हम अगर इस कॉन्टेस्ट को अगर बाहर रख दो, साइड पर रख दो, अभी सुहागन आप लोगों का मैरिड नेम टर्मिनोलॉजी है, हैं, हमारा है सुहाग। अब मुझे समझ आ गई कि आपके ये सुहागन क्यों है, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए। बंदूक ताने रखती हो आप, बच के चलना है भैया। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि भैया एक बड़ा अच्छा आया हमारे पास, उनका नाम मेरे पास नहीं है पर वो होल्ड पे हैं। उन्होंने बोला, मारिन भाई अगर सुहागन है तो पति का नाम तो अजय देवगन होना चाहिए। फिर एक आए बोले, मारविन भाई अगर सुहागन है तो यहाँ सुहाग गोली करो, क्योंकि गन में गोलियां भी तो चाहिए। और मुझे लगता है आज के विनर दो रहे जी, पंकज जो कि बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने, और दूसरे जो मेरे लिए हैं वो हैं जनाब, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, पर वही थे जिन्होंने बोला था गोली। तो जो भाई साहब ने गोली बोला था, क्या आप कृपया मुझे कॉल करेंगे ताकि मैं आपको, मतलब सुहाग गोली बोला था आपने, ताकि मैं आपको इस गरबे की टिकट दूं जो इस सैटरडे को है, ब्रॉट यू बाय DFW गुजराती समाज एट द फ्रिस्को फ्लायर्स, एंड दिस इज गिवन टू यू courtesy of SFLWorldwide.com एंड SFLWorldwide। फॉर नाउ लेट्स टेक यू टू पुसाजिनी।
1: इंग्लिश स्कूल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताएं, आई लव यू।

वंडरफुल कॉन्टेस्ट, ऐसे ऐसे खेल खेला खेलना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा खेला खेलना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, मारवीन भाई आप बड़ी बातें बताते हो, ये बताओ कि मूली की माँ को क्या बोलेंगे? मैं इसमें क्या बड़ी बात है, माँ मूली बोलेंगे और क्या, ऐसे टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी लाइफ में यार। और एक और बात बता दूँ आपको, पता है ये पाकिस्तान में ना एक जगह है पेशावर, उसका नाम पेशावर पता कैसे पड़ा? क्योंकि जब गोरे आए थे ना तो वही एक शहर था जहाँ पे एक बड़ा सा शावर लगा हुआ था और वहाँ पे शावर था, समझ रहे हो? तो किसी को बताते थे शावर कहाँ, वो कहते वहाँ पे शावर, बस इसी तरह पेशावर नाम पड़ गया। मैं ज्ञान की बातें कभी कभी बांट देनी चाहिए यार।

ईशक तेरा तड़पावे राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। वंडरफुल बातें आज सीखने को मिली यार मुझे, बल्कि मेरे को तो ये पता लगा कि अगर करण लड़का हो और उसको कुछ दिखाना हो तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं करण सी एंड करण कैन सी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट देम राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक। हियर वी गो विद दैट। जब तक सुनिए ये गाना, मैं आता हूँ वापस विद मोर टॉक्स एंड मोर फन।

0: भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना। बिल्कुल दिखाएंगे यार, चेहरा नूरानी और एड़ियां फटी हुई। क्रैक क्रीम लगाया करो, ऐड आती थी मुझे, वो ऐड याद आ गई। बाय गॉड वो ऐड ना, मतलब उसमें कुछ खास नहीं था, बट वो उसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, वो इतनी क्रिस्प थी कि वो आपको छोड़ ही नहीं सकी, मतलब मुझे नहीं छोड़ पाई एटलीस्ट आज तक भी। वो ना ऐड थी क्रैक क्रीम की। अब क्रैक क्रीम क्या होती थी, जो एड़ियाँ फट जाती है ना साइडों से, ड्राई, जिसको ड्राई क्या बोलते हैं, एंकल्स, तो ड्राई एंकल्स से वहाँ पे ना कट्स आने शुरू हो जाते हैं, फट जाती हैं एड़ियाँ। एंड इंडिया में ऐड आती थी क्रैक क्रीम की। तो क्रैक क्रीम की ऐड में क्या था कि बड़ा लड़की लेडी है, उसने बड़ी अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है, कपड़ा सूट कुछ ऐसा पहना हुआ है, और म्यूज़िक म्यूज़िक बज रहा है, और एकदम से लड़की का चेहरा दिखाते हैं, तो बोलते हैं चेहरा नूरानी, और फिर एंगल जाता है एड़ियों पे, और एड़ियां फटी हुई। तो क्रैक क्रीम लगाओ, जिस तरह से उसने बोला था ना यार, ये डिलीवरी, बाय गॉड जिस चीज़ को याद होगी, आई एम श्योर यू आर लाफिंग थिंकिंग अबाउट दैट ऐड, के चेहरा नूरानी, एकदम से कहां थप्पड़ मारा उन्होंने जोर से जाके, तब पता लगा जब ऐड देखोगे आप। एंड एक और ऐड मुझे बड़ी पसंद थी, दैट वॉज द धारा धारा शुद्ध धारा। उसमें एक छोटा सा बच्चा जब घर छोड़ के चला जाता है, उसको रेलवे स्टेशन में ले जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, पर घर में तो मम्मी ने बड़ी बड़ी जलेबी बनाई है, जलेबी, तो उसको देख के वो वापस आता है। आई थिंक सर्टन एड्स जस्ट स्टे विद यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे को तो लगता है सारी उम्र ये दो एड्स मेरे साथ रहेंगी। ऑफकोर्स वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। आज एक और जन्मदिन है जी, जिसको जो मेरे को लगता है सबकी पसंद है, उनका नाम है रसल पीटर। समबॉडी गोना गेट अ हर्ट रसल, हाँ जी, इनका बर्थडे आज ही के दिन होता है, 29th of September 1970 ही वॉज बॉर्न इन टोरंटो कैनेडा। ही इज 56 ईयर्स ऑफ एज, हाईली सक्सेसफुल कमेडियन एंड एक्टर हु यूजेस हिज माइनॉरिटी स्टेटस टू अलाउ हिम टू पोक फन एट डिफरेंट रेसेस, दैट्स व्हाट पीपल से, बट आई थिंक कॉमेडी इज एन आर्ट, एंड इफ यू कैन डू दैट इन अ वे व्हिच मेक्स पीपल लाफ एंड स्माइल, आई थिंक यू नो, इफ यू आर रेडी टू टेक सम जोक्स, दे कैन गेट अ लिटिल हियर एंड देयर, बट आई थिंक टिल द टाइम दे आर ऑल फॉर अ गुड purpose, that's what that really matters, and if it's not serious, that's what that matters. So let's wish Mr. Rasal Peters a very happy birthday from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas. Uske saath saath today we're also celebrating Zachary Levy, who is an actor jo ki aapko dikhe the in the NBC series Chuck. He was also featured in Alvin and the Chipmunks, The Squeakquel, and Thor the Dark World, and he also starred in NBC series Heroes Reborn as Luke Collins. Today marks his birthday. A very happy 46th birthday to Mr. Zachary Levy. You are listening to your evening drive time show. I'm about to get into a short commercial break. On the other side, I will see you. And let's talk about some more fun. Kuch aur gaane. Just coming back for you in a bit. This is Fun Asia.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
3: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
2: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
3: दम में नरमी, मसालों में जादू, और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
4: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Wait a minute. You.
10: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
11: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law office.

0: flavor.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
3: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

बॉस फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम अरविंद दास. साथ साथ आपको बता रहा था मैं अबाउट टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर. दे आर लोकेटेड राइट इन द हार्ट ऑफ दो लोकेशन हैं, फ्रिस्को एंड इन अर्विंग. अर्विंग वन इज़ ऑन 635 इन बेल लाइन. द फ्रिस्को वन इज़ अ ब्रांड न्यू लोकेशन जहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं जैसे कि पेल्विक फ्लोर थेरेपी एंड मैनी अदर प्रोसीजर्स टू मेक श्योर दैट यू आर आउट ऑफ पेन विदाउट मेडिकेशन. दैट्स देयर गोल. इट्स रन बाय प्रोफेशनल physiotherapist. His name is Rushi and he is the one who's also the physiotherapist for Mumbai Indians in New York, the team that plays here, and for many of the MLC players. Ek gana aur hai ji, iske baad ijazat lene ka time hone wala hai, but make sure that you do stop by texasstarrehab.com's website. That's texasstarrehab.com. All of the information is there for you, and before you give your parents that painkiller or you consume one yourself, make sure ki aap ek baar Texas Star Rehab zarur jaiye and tell them your concerns and they will find natural ways to get you out of your pain. You're listening to Evening Drive Time Show. Let's take you to another beautiful number. Ye request aayi thi hamari bhabhi hai, Mrs. Sahni. Mrs. Sahni, this is for you.

लगन लगी तुमसे मन की लगन, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, एंड द मूवी वाज कॉल्ड पाप। इट वाज अ डिफरेंट मूवी, इसमें जॉन अब्राहम थे, साथ में उदिता गोस्वामी वाज इन दिस वन, एंड आई थिंक डिफरेंट मूवी, आई लाइक्ड इट। बहुत देर हो गई इस फिल्म को देखे हुए एक्चुअली, एंड आई वुड लव टू सी दैट। बट फॉर द पीपल इन ग्रैंड प्रेरी जिन्होंने हिमालयन बाजार के बारे में मेरे से बहुत सुना है, पहले तो बताऊंगा हिमालयन बाजार के बारे में, दैट इज फॉर श्योर, बट आपको एक और अच्छी चीज़ भी बताने लगा हूँ। तो हिमालयन बाजार इज अ ब्रांड न्यू ग्रोसरी स्टोर जो कि ग्रैंड प्रेरी में खुला है, एंड इट इज लोकेटेड इन सच अ वे दैट इट सर्व्स आर्लिंगटन के लोगों को भी सर्व करता है, ग्रैंड प्रेरी करता है, मैंसफील्ड करता है। दे आर राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360, इट इज कॉल्ड हिमालयन बाजार, एंड नाउ देयर किचन इज ओपन। जी हाँ, ग्रोसरी स्टोर के साथ साथ जहाँ आपको ताज़ा सब्जियाँ, फल, सारी फ्रोजन आइटम्स, योर दही, योगर्ट्स, बटर्स, देसी घी, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको हलाल मीट शॉप मिलती है जिसमें आपको ऑल काइंड ऑफ मीट्स, एंड फॉर द नेपलीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको वाटर बफ भी वहाँ पे उपलब्ध है, एंड ऑफ कोर्स एनी ऑफ योर ग्रोसरी आइटम्स। बट अब जो आपके लिए आया है दैट इज देयर हिमालयन बाजार किचन विच इज़ ओपन स्टार्टिंग October 2nd, यानी कि इस वीकेंड से खुलना शुरू हो जाएगा जी, एंड एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे फॉर योर फेवरेट मोमो, पानी पूरी, चटपटे, नेपाली स्टाइल स्ट्रीट फूड एंड मोर, चाय, कॉफी, ऑफ कोर्स समोसे एंड पकौड़े विल ऑलवेज बी देयर। इस वीकेंड का प्लान बनाते बनाते उसमें हिमालयन बाजार भी ऐड कीजिए, एंड मेक श्योर यू स्टॉप बाय टू हैव सम ऑफ दैट ग्रेट फूड। हिमालयन बाजार, योर नेबरहुड ग्रोसरी, नाउ सर्विंग योर वीकेंड क्रेविंग्स। अच्छा, आपको पता है ये मोमो का नाम कैसे पड़ा? मोमो का नाम ऐसे पड़ा जनाब कि गोरे गए थे नेपाल, वहाँ पे इन्होंने खिलाया जी उनको मोमो। उस टाइम पे उसका नाम नहीं था, कुछ लोकल नाम था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने मोमो खाए, अब जब इन्होंने मोमो खाए तो गोरों को बहुत पसंद आया। उसने लेडी को बोला जो सर्व कर रही थी, मो मो आई वॉन्ट मो आई वॉन्ट मो, क्योंकि आर तो बोलते नहीं ना, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजी वाले, अमेरिकन वाले मोर कहते हैं, इंग्लैंड वाले कहते हैं कैन आई हैव सम मो, कैन आई हैव सम मो, उन्होंने मोमो डन, नाम ही मोमो रख दिया। अब इतिहास आपको पता है। वैसे आपने एक बात नोटिस की है कि आप जब भाभी को लेने गए थे पहली बार ही, जब आप रिश्ता करने गए थे तो भाभी की आवाज़ कितनी लो वॉल्यूम पे थी, फिर जब आप भाभी से मिलते मिलते मिलते मिलते शादी तक पहुँचे, वो कब एक छोटे से स्टीरियो से कब सब ऊपर बन गई पता ही नहीं चला ना सफ़र का। ओ सफ़र तो आपने किया, आपको पता होगा। बाई गॉड, वैसे तो ये बात सच्ची है, डेट करते करते कहाँ एक छोटे से मतलब एयर प्लग से बढ़ के स्टीरियो, स्टीरियो से बढ़ के होम थिएटर, होम थिएटर से बढ़ के ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से बढ़ के फुल फ्लैज डीजे बजता है अब।

मेरी जान मुझे मजनू बनाकर कहाँ चल दी कहाँ चल दी। पियू प्यार की पुंगी बजाकर मेरा टाइम हो गया जी। पियू मतलब ये टाइम हो गया मेरा शो खत्म होने का यार, अलार्म बज गया। एंड शो खत्म हुआ है भैया, पर जिंदगी अगर दोबारा रहेगी, ऊपर वाला कल मौका देगा तो कल शाम को फिर से आऊंगा जी 5 to 7 विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो ऑन एवरीबॉडीज फेवरेट स्टेशन जिसका नाम है फन एशिया रेडियो 104.9 FM। और मैं जोक्स करता हूँ यार, यस आई मेक सम जोक्स, आई टॉक सम जोक्स, पर पता है क्यों? क्योंकि भाई अपने को तो एक ही काम है, ठीक है, अपने को एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक के यमराज का भैंसा काला लेके खुद हंसता नहीं है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो जब तक वो काला भैंसा नहीं लेके आएंगे यमराज जी, मेरा काम है हंसा हंसा के आपको रखेंगे जी हम खुश। दैट इज व्हाट वी डू। और पहले एक बार ही आया था यमराज, मुझे आके कहता है मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं। मैं कहा इसमें क्या टेंशन है सर, चार घर छोड़ के रहती है, ले लो। चलो बी पाजी तुसी इतना ना गुस्सा करो, मैं जा रहा हूँ, आप इतना नाराज ना हो। बी पराग तो गुस्सा ही करके कह रहे मारो जा भी अब। हाँ जा रहा हूँ, जाता जाता ये बता दूं मेरे बाद इज गोना बी इपी द हिपी एंटरटेनिंग यू फ्रॉम 7 to 10। व्हाट अ लवली शो शी ब्रिंग्स अप एज वेल। कुछ बड़ी मतलब बातें करती हैं, कभी टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स, दिस दैट एंड मेनी मोर। अगर आपने उनका शो नहीं सुना है तो अब आप सुनेंगे, क्योंकि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, चेक करो। नई आरजे आई है हमारी टीम में, अब तो खैर काफी देर से जुड़ी हुई है हमारे साथ, बट स्टिल इफ यू हैवंट हर्ड हर बिफोर गिव हर अ लिसन। और अगर सुनते हैं तो फिर तो सुनते रहिए आपका अपना स्टेशन जिसका नाम है द वन एंड ओनली फन एशिया रेडियो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, आई विल डू द सेम फॉर यू। अदियोस, टाटा, गुड नाइट।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
0: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind the